ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 21, तदनुसार 12 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 हो रहे हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल

0: And have advanced to the semi-finals, beating Norway 2-1 at Miami Stadium, Florida this morning. Jude Bellingham's brilliant two-goal display inspired England to come from behind to beat Norway after extra time. In tennis, the 21-year-old Linda Navskova won her maiden Grand Slam title after defeating fellow Czech Karolina Muchová 6-2, 5-7, 6-3 in the Wimbledon women's singles final at Centre Court London last night. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:10 हो रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत करते हैं दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम खेती की बातें में आज आप जानेंगे मछली पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी प्रवीण सेठी।

खेती की बातें कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण श्रोता मित्रों को प्रवीण सेठी का जोहार। श्रोता मित्रों, खेती की बातें कार्यक्रम के तहत आज हम सुनने वाले हैं मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे यानी केसीसी के फायदे। जी हां श्रोता मित्रों, अगर आप मत्स्य पालन कर रहे हैं, छोटे स्तर पर कर रहे हैं या फिर बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, आपको ऋण की आवश्यकता पड़ती ही है, लेकिन ऋण ऐसा जिससे आप पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसके लिए सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है ताकि हमारे जितने भी मछुआरे भाई बहन हैं वो लाभान्वित हो सके। मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी मछली पालकों को बहुत सस्ते में ऋण उपलब्ध कराता है। इससे मछुआरे मछली पकड़ने, दाना और बीज खरीदने जैसे खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह कार्ड मछली पालकों को बिचौलियों के महंगे कर्ज से बचाते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमारे कुछ सीधे साधे ग्रामीण भाई बहन हैं जो कि बिचौलियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर अतिरिक्त कर्ज में डूब जाते हैं। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। ऐसे में सरकार के द्वारा सस्ता लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। केसीसी पर ब्याज दर आम तौर पर 7% वार्षिक होता है। समय पर लोन चुकाने पर सरकार 3% की छूट देती है, यानी अगर आपको ऋण के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया है और 5 वर्ष के लिए आपने ऋण लिया है और आप 5 वर्ष के अंदर ऋण चुका देते हैं तो आपको 3% की छूट मिलेगी, यानी प्रभावी ब्याज दर केवल 4% ही रह जाएगा। बिना कोई जमीन या संपत्ति गिरवी रखे आप 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लोन में आपको जमीन या संपत्ति गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन 2 लाख रुपए तक के लोन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई जमीन या संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। मछली पालने के लिए रोजाना के खर्चे जैसे मछली का दाना, जाल, दवाई और बिजली का बिल भरने के लिए इस केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तुरंत पैसे मिल जाते हैं। बजट के अनुसार सरकार ने केसीसी की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है। इस कार्ड के साथ हमारे ग्रामीण भाई बहनों को 50,000 तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा भी मिलता है, यानी अगर आप कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं तो 50,000 तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा आपको तुरंत उपलब्ध होगा। लोन चुकाने की अवधि 5 साल तक होती है और इसे हर साल आसानी से नवीनीकरण किया जा सकता है। मत्स्य पालक भाई योजना की विस्तृत जानकारी और आवेदन फॉर्म अपने नजदीकी बैंक या जन समर्थ पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। श्रोता मित्रों, अब आप सोचते होंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। जी हां श्रोता मित्रों, मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का मुख्य उद्देश्य मछली पालकों को उनकी कार्यशील पूंजी की दैनिक जरूरतों के लिए सस्ता और समय पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है। यह कार्ड मछली, झींगा और अन्य जलीय जीवों के पालन पोषण और पकड़ने का खर्च उठाने में मदद करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य है किसानों को साहूकारों जैसे महंगे विकल्पों से बचाना है ताकि उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। तो श्रोता मित्रों, इस तरह से आपने जाना केसीसी के संबंध में। तो देर ना करें, अगर आप भी मछली पालन कर रहे हैं या फिर मछली पालन जैसे व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो बिना देर किए अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएं और केसीसी से संबंधित जानकारी हासिल करें, आवेदन करें और सस्ते ऋण प्राप्त कर अपने व्यवसाय को शुरू करें और फिर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तो दीजिए अनुमति प्रवीण को जोहार।

दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें अभी आप सुन रहे थे और आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं आपने जाना मछली पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे हैं। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी प्रवीण सेठी कार्यक्रम खेती की बातें में। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:15 हो रहे हैं, प्रस्तुत है चिंतन। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण का ये सुविचार जीवन के हर पहलू में गूंजता है। जब हम परिणामों को लेकर उलझ जाते हैं, तब हम अपने कर्म की शक्ति को खोने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा संतुलन तब आता है जब हम अपने कार्य को पूर्ण समर्पण और ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसके फल की अपेक्षा नहीं करते हैं। कई बार जीवन में असफलता हमें निराश कर देती है, लेकिन यदि हम केवल इस अनुभव के रूप को ही स्वीकार कर लें और पुनः अपने प्रयास में जुट जाएं, तो सफलता निश्चित है। श्री कृष्ण का ये संदेश, जीवन में जो कुछ भी हमारे हाथ में है वो केवल कर्म है, वही करें, श्रेष्ठा से करें और अपने कार्य को पूजा के रूप में देखें। जो व्यक्ति बिना किसी लालच या डर के अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, वही वास्तव में मन की शांति और जीवन की सच्ची सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आइए आज के इस पल में हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को पूरी निष्ठा से करने का संकल्प लें, बिना परिणाम की चिंता किए।

ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर, और श्रोताओं आप हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। और अब प्रस्तुत करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आप सभी का स्वागत है। आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी मातृभूमि को समर्पित इस देश

संवेद स्वरों में अभी आपने सुनाई देशगान। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और अब आइए कार्यक्रम में आके सुनते हैं लता मंगेशकर, हरिओम शरण, भीम सेन जोशी, उषा मंगेशकर, जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में ये भजन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। इसी भजन के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चमरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और श्रोताओं आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। इस समय सुबह के 7 बजने को है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हिंदी में।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूक वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूक वोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकुआ को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें आज के इतिहास यानी 12 जुलाई के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियां। श्रोताओं, आज के दिन ही सन 1998 में 16वें विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में फ्रांस ने ब्राजील को 3-0 से हराया था। और आज के दिन ही सन 2001 में भारत और बांग्लादेश अगरतला और ढाका के बीच मैत्री बस सेवा प्रारंभ हुई थी। आज ही के दिन सन 2005 में मशहूर क्रिकेट अंपायर डेविड शेफर्ड ने संन्यास लिया था। और अब श्रोताओं, आपको बता दें आज के दिन ही सन 1982 में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल का जन्म हुआ था। श्रोताओं, आज के दिन ही भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक जो गूगल खोज अनुभाग के सीईओ हैं सुंदर पिचई, इनका जन्म भी आज के दिन ही सन 1972 में हुआ था। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं सुंदर पिचई, जो तकनीकी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी अल्फाबेट कंपनी के गूगल खोज अनुभाग के सीईओ हैं। 10 अगस्त सन 2015 को उन्हें गूगल खोज का नया कार्यकारी अधिकारी चुना गया और 2 अक्टूबर 2015 को सुंदर पिचई ने अपना पद संभाला। हाल ही में भारत सरकार ने सुंदर पिचई को पद्म भूषण से सम्मानित किया। और श्रोताओं, आज का दिन भारतीय सिनेमा के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि आज है जन्मदिन सुलक्षणा पंडित का। आज ही के दिन सन 1954 में भारतीय सिनेमा की खूबसूरत और प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक रहीं सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था। भारतीय सिनेमा की खूबसूरत और प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक सुलक्षणा पंडित अदाकारा होने के साथ साथ एक बेहतरीन गायिका भी रहीं। इन्होंने अपनी फिल्मों के लिए खुद ही गाने गाए और ये गाने काफी हिट भी रहे। सुलक्षणा पंडित ने अपने दौर के सभी बड़े सिने सितारों के साथ काम किया, जिनमें राजेश खन्ना, जितेंद्र, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार शामिल हैं। अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित ने सन 1975 में आई फिल्म उलझन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। श्रोताओं, आज ही के दिन हिंदी सिनेमा में प्रचलित यथार्थवादी और व्यावसायिक धाराओं के बीच की दूरी को पाटते हुए लोकप्रिय फिल्में बनाने वाले बिमल रॉय का भी जन्म हुआ था सन 1909 में। बिमल रॉय का नाम आते ही हमारे जहन में सामाजिक फिल्मों का ताना बाना आंखों के सामने घूमने लगता है। उनकी फिल्में मध्य वर्ग और गरीबी में जीवन जी रहे समाज का आईना थी, चाहे वो उसने कहा था हो या परख, काबुलीवाला, दो बीघा जमीन, बंदनी, सुजाता या फिर मधुमति ही क्यों ना हो, एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। श्रोताओं, आज के दिन ही भारत के भूतपूर्व और 16वें मुख्य न्यायाधीश रहे वाई बी चंद्रचूड़ का भी जन्म सन 1920 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक दुर्गा प्रसाद खत्री का जन्म भी आज के दिन ही 1895 में हुआ था।

हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक, खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण साहब का निधन आज के दिन ही सन 2013 में हुआ था। इसके साथ ही श्रोताओं, 2012 में आज के दिन ही विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह का भी निधन हुआ था। अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान और प्रसिद्ध अभिनेता रहे दारा सिंह 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इन्होंने खेल और मनोरंजन की दुनिया में समान रूप से नाम कमाया और अपने काम का लोहा भी मनवाया, और यही वजह थी श्रोताओं की उन्हें अभिनेता और पहलवान दोनों तौर पर जाना जाता था। उन्होंने सन 1959 में पूर्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ गेम्स की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। बाद में वे अमरीका के विश्व चैंपियन लाओ थेज को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बने। श्रोताओं, आपको सीरियल हनुमान के, सीरियल रामायण के

हनुमान के किरदार को तो याद ही होगा। श्रोताओं, ये हनुमान का किरदार निभाया था दारा सिंह ने। इनके इस किरदार ने इन्हें घर घर में ऐसी पहचान दी कि अब किसी को याद ही नहीं रहा कि दारा सिंह अपने जमाने के वर्ल्ड चैंपियन पहलवान थे। सब उन्हें हनुमान कहकर ही पुकारने लगे। ये वो किरदार हैं जिसने पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह की पूरी पहचान ही बदल दी। सन 1986 में रामानंद सागर के सीरियल रामायण में दारा सिंह हनुमान के रोल में ऐसे रच बस गए कि इसके बाद कभी किसी ने किसी दूसरे कलाकार को हनुमान बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। रामायण सीरियल के बाद आए दूसरे पौराणिक धारावाहिक महाभारत में भी हनुमान के रूप में दारा सिंह ही नजर आए। सन 1989 में जब लव कुश पौराणिक तथा छोटे पर्दे पर उतारी गई फिल्म, तो उसमें भी हनुमान का रोल दारा सिंह ने ही किया। सन 1997 में आई फिल्म लव कुश में हनुमान बने थे दारा सिंह। सन 1966 में दारा सिंह को रुस्तमे पंजाब का खिताब मिला और साथ ही सन 1978 में रुस्तमे हिंद के खिताब से इन्हें नवाजा गया। और श्रोताओं, आज के दिन ही सन 1999 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध और सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राजेंद्र कुमार 1960 और 70 के दशक के फिल्मों से सक्रिय थे। उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने के अलावा कई फिल्मों का निर्माण भी किया और निर्देशन भी। हिंदी फिल्मों में अपने सफल अभिनय और बेमिसाल अदाकारी की वजह से राजेंद्र कुमार ने जो स्थान बनाया, वहां तक पहुंचना हर अभिनेता का सपना होता है। राजेंद्र कुमार की हर फिल्म इतनी हिट होती थी कि वो कई सालों तक बेहतरीन बिजनेस किया करती थी और यही वजह थी कि लोग उन्हें जुबली कुमार के नाम से भी पुकारते थे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज यानी 12 जुलाई के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियां। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 7:12 हो रहे हैं, प्रस्तुत करते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और श्रोताओं आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 7:20 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज हमने शामिल किए हैं अंकिका लोकगीत, कलाकार हैं निरंजन शर्मा और साथी

लोकगीतों के कार्यक्रम में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे अंकिका लोकगीत कलाकार थे निरंजन शर्मा। और अब आइए श्रोताओं प्रस्तुत करते हैं बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। कार्यक्रम सुरांजलि में श्रोताओं आज हमने शामिल किए हैं नजरुल गीति, कलाकार हैं आनंदिता गुप्ता।

बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अभी आप सुन रहे थे। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए थे नजरुल गीति, कलाकार थी आनंदिता गुप्ता। और इसी के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत करते हैं

कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है हमारी किडनी और हमारा स्वास्थ्य। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संतोष कुजूर और इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे किडनी के बारे में। आज हमारे साथ हैं दक्षिण पूर्व रेलवे अस्पताल टाटानगर के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुजूर। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे शरीर में किडनी का क्या मुख्य कार्य होता है।
1: हमारे शरीर में किडनी, जिसे हम हिंदी में गुर्दा बोलते हैं, यह दो होता है, एक दाएं और एक बाएं। और हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और यह एक हमारा फिल्टर ऑर्गन है, जिसे आप बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जो हमारे शरीर में प्रोटीन के टूटने के बाद में जो बेकार के पदार्थ बन जाते हैं, जिसको हम यूरिया कहते हैं, वो उसे फिल्टर करता है।
0: जी।
1: हमारे शरीर के अंदर में सोडियम पोटेशियम कितनी मात्रा में होगी, उसे भी नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंदर में ग्लूकोज प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी, उसे भी नियंत्रित करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ पूरे शरीर के जितने भी कार्य फंक्शन होने के बाद में जो भी विकार पैदा होते हैं, उन्हें वो फिल्टर करके पुनः हमारे शरीर में फ्रेश करके वो वापस कर देता है। साथ ही साथ किडनी में एक हार्मोन भी होता है, जिसको हम एरिथ्रोप्रोटीन बोलते हैं, जो हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी सहायक होता है।
0: ऐसा माना जाता है कि जो मधुमेह के रोगी हैं, जिन्हें काफी समय से मधुमेह की बीमारी है, उनका किडनी प्रभावित होता है एक लंबे समय से, अगर मधुमेह के शिकार वो है तो।
1: हाँ, मधुमेह के साथ इसका संबंध है। और उसमें ये संबंध है कि जैसे हम लोग मधुमेह किसको कहते हैं, यदि खाली पेट में किसी की ब्लड शुगर जांच की जाए और 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो, वो नॉर्मल है। खाने के बाद 140-150 मिलीग्राम डेसीलीटर से यदि शुगर की मात्रा ब्लड में कम हो, तो उसे हम नॉर्मल मानते हैं। तो यहाँ पर अगर मधुमेह किसी को मानते हैं, तो हमारे किडनी के फिल्टर करने की क्षमता वह 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। यदि इससे ज्यादा हमारे ब्लड में शुगर आए, तो वह उसे 180 तक फिल्टर वापस करेगा और बाकी को छोड़ देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मधुमेह के साथ जो किडनी का संबंध है, वो ये निर्भर करता है कि कब किडनी प्रभावित होकर के फेलियर की तरफ जाएगा। वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी रहती है आमतौर पर, और कितने दिनों से है। यदि हम देखें, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यदि उसका 150-160 मिलीग्राम शुगर रहता है, हो सकता है ये 10 साल के बाद प्रभावित करे या प्रभावित करे ही ना। लेकिन यदि किसी की मात्रा 200 मिलीग्राम शुगर रहती है, तो हो सकता है इसको 5 सालों के अंदर हो जाए। तो इसका सीधा संबंध है, ब्लड में शुगर की मात्रा यदि ज्यादा होगी तो जल्दी प्रभावित करेगा, यदि उसे कंट्रोल किया जाए तो हो सकता है कि पूरे जीवन भी हम इससे बच सकते हैं।
0: और किडनी के जो मरीज होते हैं, उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, या डायलिसिस क्या है और किस तरह से वो किडनी को बचा के रख सकता है?
1: यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दवाइयाँ जो हैं, इसमें दवाइयों का रोल कम है। जब वो एक ऐसी स्थिति पर आ जाती है जहाँ पर किडनी इतनी हद तक खराब हो जाता है कि वो यूरिया, क्रिएटिनिन और अन्य पदार्थों को, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, सोडियम पोटेशियम, इनको जो फिल्टर नहीं कर सकता है, तो वैसी स्थिति में हमें कृत्रिम रूप से फिल्टर करने की आवश्यकता होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो मशीन जो डायलिसिस है, वह एक तरह से कृत्रिम किडनी है। हम मरीज के ब्लड को उस मशीन के अंदर चैनलाइज कर देते हैं और मशीन हमारे किडनी के सारे फंक्शन को वो करके और पुनः हमारे शरीर में शुद्ध ब्लड को वापस कर देता है। यही प्रक्रिया है डायलिसिस की।
0: आपका कहने का मतलब कि किडनी का जो फंक्शन है, वो शरीर के अंदर नहीं होके वो बाहर होता है।
1: जी हाँ, इसलिए मशीन को इस तरह से बनाया जाता है कि वो किडनी के सारे फंक्शन को कर सके और हमारे ब्लड को शुद्ध करके पुनः शुद्ध ब्लड को हमारे शरीर में भेज दे।
0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में डॉक्टर संतोष कुजूर से आपने किडनी के कार्य के बारे में जाना। स्वास्थ्य चर्चा के कल के अंक में डॉक्टर संतोष कुजूर हमें ये बताएंगे कि किडनी जब किसी का खराब होता है, तो उसका स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित होता है। तो फिर कल स्वास्थ्य चर्चा सुनना न भूलिएगा आकाशवाणी के इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: कि आज के अंक में श्रोताओं आपने जाना किडनी से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां डॉक्टर संतोष कुजूर के द्वारा। कल इस कार्यक्रम का दूसरा अंक आप सुनेंगे 4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
5: 870-001-4242।
6: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, और श्रोताओं आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 का वक्त होगा मॉर्निंग न्यूज का, और 8:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ, और सुबह 9:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरंजना। 9:30 पर होगा साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर, और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरूआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण

0: अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के

0: चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रट नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्प्टन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है। हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से

प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। रेल मंत्रालय ने गढ़वा से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक 9000 करोड़ की लागत से रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू। वित्त मंत्री ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर होंगी नियुक्तियां। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मनरेगा के अंतर्गत 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को पद सृजित कर नियमित करने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने राज्य में

0: विस्तार से रेल मंत्रालय ने झारखंड के गढ़वा जिले से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक 261 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से झारखंड और छत्तीसगढ़ रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि स्थानीय लोगों के कुछ मांगे हैं जिसे रेलवे मंत्री के समक्ष रखा जाएगा।
1: प्रतिनिधि मंडल का कहना यह था कि बड़गर बंडरिया होकर के रेल लाइन को गुजरना चाहिए। संबंध में मैंने उन्हें बताया कि जो पुराने रेल लाइन का अलाइनमेंट था उसमें गाड़ी का स्पीड 89 किलोमीटर ही रहेगा, जबकि ये रेल लाइन जो बन रही है उस पर गाड़ी की स्पीड 130 किलोमीटर होगा। पुराने अलाइनमेंट पर रेल निकलना संभव नहीं है, इसलिए नया अलाइनमेंट स्पीड के दृष्टिकोण से दिया गया है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 3,51,000 से अधिक नियमित पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल 1,87,610 पदों पर ही कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य सरकार विभागों की रिक्तियां को भरने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
2: हेमंत सोरेन जी की ही सरकार है जहां रिक्तियों को भरने की दिशा में बहुत तेज गति से कार्रवाई की जा रही है और मैं अनुमान करता हूं कि इनके कार्यकाल में लगभग 40,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां की गई हैं, इससे अधिक भी हो सकती है। सरकार की इच्छा है कि ये जो 5 वर्षों का कालखंड है यानी कि 2029 तक अधिक से अधिक राज्य के युवाओं को जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें अवसर दिया जाए ताकि वो सरकारी पदों पर नियुक्त किए जा सके।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने मनरेगा में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के हित में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए स्वीकृत पद सृजित कर उन्हें उन पदों पर समायोजित करें। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि 10 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दे चुके कर्मियों को आउटसोर्सिंग में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन 30 जुलाई तक पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। गठित समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। नई समिति में अभिभावकों की प्रमुख भूमिका होगी। समिति में 50% महिला सदस्यों की भागीदारी अनिवार्य होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि इससे विद्यालयों के संचालन, निगरानी और सामुदायिक सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने का लक्ष्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री 2025-26 में चतरा जिले ने अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए विशेष प्रयास श्रेणी 2 में 256वां रैंक प्राप्त किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यह वरीयता सूची बच्चों में सीखने का अवसर, शिक्षा की पहुंच, आधारभूत सुविधा और संरचनाएं, समानता एवं प्रशासनिक दक्षता, शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण जैसे विषयों का आकलन का तैयार किया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @ airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल @airnewsranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 14 जुलाई को बीएलओ बीएलए 2 की संयुक्त बैठक और चुनाव पाठशाला आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान अनमैप्ड मतदाताओं पर भी चर्चा होगी तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सभी पात्र नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड की बीएलओ जमीला बीबी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान पैसे मांगने का आरोप था। जिले के उपायुक्त पीएन मिश्रा ने बताया कि बीएलओ जमीला बीबी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने पैसे न देने पर नागरिकता रद्द करने की धमकी दी थी।

0: ये लोग, उन्होंने कुछ लोगों से पैसा मांगा है और पैसा लिया भी। उक्त के आलोक में मैंने तत्काल प्रभाव से उस बीएलओ को वहां से जो इनोग्रेशन फॉर्म और एसआईआर की प्रक्रिया होनी थी उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है उन्हें, और साथ ही जो मूल उनका काम था आंगनवाड़ी सेविका के रूप में वहां से भी चयन मुक्त करने का निर्देश मैंने डीडीसी को दे दिया है।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार लोगों को सोलर आधारित बिजली पैनल लगाने पर विभिन्न श्रेणियों में अनुदान दे रही है। साहिबगंज के विद्युत कार्यपालक अभियंता शंभू चौधरी ने बताया कि जिनके घर में बिजली की खपत ज्यादा है उनके लिए यह योजना लाभदायक है और इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगाते हैं और सोलर लगाने के बाद उनका कंजम्पशन 200 यूनिट से कम जाता है तब तो 100% उनका बिल फ्री हो जाएगा। 100% फ्री नहीं भी होता है तो जितना यूनिट वो सोलर से जनरेट करेंगे वो एक तरह से मुफ्त होगा।
1: झारखंड में अगले सप्ताह मॉनसून के और अधिक सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 14 और 15 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश से वर्षा की कमी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। सरला बिरला पब्लिक स्कूल रांची में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 के 9वें राउंड के ओपन मुकाबले में व्यान ने जिनसन को हराया, जबकि जोहान और तमीज के बीच का मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दूसरी ओर गर्ल्स मुकाबलों में नंदी प्रीतिका ने अर्पिता को, अंशिता ने अर्षिता को और पुनीता ने पविष्णा को पराजित किया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मनरेगा कर्मियों को नियमित करने के हाईकोर्ट के आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने वियतनाम में स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीयों की मौत की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, बहरागोड़ा में करोड़ों का पन्ना जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। हिंदुस्तान ने रांची के चिकित्सक डॉक्टर शशि दिनकर की दुमका के मसानजोर के गेस्ट हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत न्यूजीलैंड ने संबंधों को दिया रणनीतिक महत्व का दर्जा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्रालय ने गढ़वा से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तक 9000 करोड़ की लागत की रेलवे लाइन परियोजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू। वित्त मंत्री ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर होंगी नियुक्तियां। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मनरेगा के अंतर्गत 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को पद सृजित कर नियमित करने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने राज्य में 14 और 15 जुलाई को भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट, बारिश की कमी पूरी होने की उम्मीद। और रांची के सरला बिरला स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में नन्हे प्रतिभागी कर रहे शानदार खेल का प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी रांची से ये प्रसारण आप सुन रहे हैं मनीष के साथ।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों के आज के सफर में श्रोताओं आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। नमस्कार।

श्रोताओं, आज है 12 जुलाई और आज है जन्मदिन सुरों की मलिका सुलक्षणा पंडित का। हिंदी सिनेमा की दिग्गज पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित के जन्मदिवस पर आज हम उन्हें नमन करते हैं। 70 और 80 के दशक में अपनी जादुई आवाज और अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सुलक्षणा जी संगीत के प्रतिष्ठित मेवात घरानी से ताल्लुक रखती हैं। तू ही सागर है, तू ही किनारा और मौसम मौसम लवली मौसम जैसे सदाबहार गानों को अपनी आवाज़ देने वाली सुलक्षणा जी ने संजीव कुमार, राजेश खन्ना और जितेंद्र जैसे बड़े सितारों के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में भी अमिट छाप छोड़ी। उनकी आवाज़ में एक अनोखा ठहराव और दर्द था जो सीधे रूह को छूता था। कला जगत में उनका योगदान हमेशा अमर रहेगा। आइए उनकी ही आवाज़ में सुनते हैं फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये गाना।

फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना अनवर हुसैन और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है गुलजार साहब ने और धुन बनाई है खयाम ने।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं, आप सुन रही हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और आज का दिन भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग के स्तंभ और महान निर्देशक बिमल रॉय के जन्मदिन का भी है। आज बिमल रॉय का भी जन्मदिन है और आज हम इन्हें इनके जन्मोत्सव पर इन्हें नमन करते हैं। श्रोताओं, बिमल दा केवल एक फिल्मकार नहीं थे बल्कि समाज के एक संवेदनशील चित्रकार भी थे। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से शोषित और मध्यम वर्ग के दर्द को पर्दे पर बेहतर और बेहद संजीदगी से उतारा है। फिल्में देखिए दो बीघा जमीन, देवदास, मधुमती या बंदिनी, इन जैसी कालजयी कृतियों के जरिए उन्होंने यथार्थवादी सिनेमा की मजबूत नींव रखी। उनकी फिल्मों में सामाजिक संदेश के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का गहरा पुट होता था जो दर्शकों के दिलों को झकझोर देता था। भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा और पहचान देने वाले ऐसे महान युग दृष्टा को हमारा सादर नमन।

विमल रॉय प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म मधुमती का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। वो लिखे हैं शैलेंद्र ने और धुन बनाई है सलिल चौधरी ने। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने को है श्रोताओं अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में समाचार हिंदी में। और फिर 9:05 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम सुरंजना के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार

0: आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक विशाल अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ विचार विमर्श किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई है। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फू क्वोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिन तक मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इंग्लैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का मैच अभी जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम 1-1 गोल से बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओ, आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 9:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम सुरंजना।

नमस्कार श्रोताओं, सिनेमा की दुनिया में जब भी हीरो की एंट्री होती है तो तालियां और सीटियां बहुत बजती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी एक्टर की एंट्री पर थिएटर्स में खौफ का एक सन्नाटा पसर जाए? एक ऐसे अभिनेता जिनका नाम पर्दे पर आते ही लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती थी और स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था, एंड प्राण। जी हाँ श्रोताओं, आज कार्यक्रम सुरंजना में हम नमन कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे बेमिसाल और खूंखार लेकिन असल जिंदगी

में बेहद दिलदार इंसान प्राण साहब को आज इनकी पुण्यतिथि पर। प्राण साहब का खौफ सिल्वर स्क्रीन पर इस कदर हावी था कि 50 और 60 के दशक में लोगों ने डर के मारे अपने बच्चों का नाम प्राण रखना तक छोड़ दिया था। लेकिन पर्दे के पीछे का ये विलन असल जिंदगी में कितना बड़ा फनकार और यारों का यार था, आज इसी हकीकत से हम पर्दा उठाएंगे। आज कार्यक्रम सुरंजना में इनके संघर्ष, इनकी अदाकारी और इनके इस बेमिसाल संगीतमय सफर को हम करीब से महसूस करते हैं। किरदार बदले, लिबास बदले, बदला हर एक अंदाज, पर जिसके आगे फीका पड़ गया हर बड़े हीरो का राज। खलनायकी की दुनिया के जो बने असली शहंशाह, ऐसे प्राण साहब को सलाम करता है पूरा देश। आज बातें अभी और भी करेंगे, कार्यक्रम सुरंजना की शुरुआत करते हैं प्राण साहब के इस सबसे खूबसूरत गाने के साथ।

फिल्म जंजीर का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना, मन्ना डे की आवाज़ में गुलशन बावरा के बोल हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना। और श्रोताओं अभी ये जो गाना आपने सुना फिल्म जंजीर का, बातें करते हैं उस दोस्ती की जिसने एक डूबते हुए करियर को बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन बना दिया। 70 का दशक था, अमिताभ बच्चन की लगातार कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा एक फिल्म बना रहे थे जंजीर। इस फिल्म के लीड रोल के लिए कई बड़े हीरो मना कर चुके थे। तब प्राण साहब ने प्रकाश मेहरा से कहा कि आप इस लंबे लड़के को ले लो, इनकी आंखों में एक अलग गुस्सा है। प्राण साहब के कहने पर अमिताभ की वो फिल्म मिली और खुद प्राण साहब ने उसमें किरदार निभाया पठान शेर खान का। पर्दे पर शेर खान और इंस्पेक्टर विजय की उस दुश्मनी और फिर दोस्ती ने कमाल कर दिया। अमिताभ बच्चन खुद मानते हैं कि उनके करियर के टर्निंग पॉइंट में प्राण साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इन दोनों की जोड़ी ने इसके बाद डॉन, अमर अकबर एंथनी और मजबूर जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। श्रोताओं प्राण साहब का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था। उनका जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता एक सरकारी सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। लेकिन श्रोताओं प्राण साहब कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। उनका सपना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने का था। उन्होंने रामपुर और लाहौर में बाकायदा फोटोग्राफी सीखी और एक स्टूडियो में काम भी शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत आपको वहाँ खींच ही लाती है जहाँ आपकी मंजिल लिखी होती है। लाहौर की एक पान की दुकान पर खड़े प्राण साहब पर मशहूर लेखक वली मोहम्मद वली की नज़र पड़ी। उनकी कटीली आंखों और रौबदार शख्सियत को देखकर वली साहब ने उन्हें पंजाबी फिल्म यमला जट में एक रोल ऑफर कर दिया। फिल्म काफ़ी हिट रही और लाहौर में उनका काम चल पड़ा, यहाँ तक कि वे कुछ फिल्मों में हीरो भी बने। और फिर आया साल 1947। देश के विभाजन ने सब कुछ बदल दिया। प्राण साहब को अपना सब कुछ छोड़ लाहौर छोड़कर मुंबई आना पड़ा। मुंबई में शुरुआत काफ़ी कठिन थी, जेब खाली थी और रहने को ठिकाना नहीं था। फिर लेखक सादत हसन मंटो की मदद से उन्हें देवानंद स्टारर फिल्म जिद्दी जो 1948 में आई थी वो मिली। इस फिल्म में उन्होंने जो खलनायक का किरदार निभाया उसने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया और बॉम्बे ने जान लिया कि खलनायकी का एक नया तूफान भारतीय सिनेमा में कदम रख चुका है। आइए आपको सुनाते हैं फिल्म कसौटी का ये गाना जिसे गाया है किशोर कुमार ने, वो लिखे हैं वर्मा मलिक ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: तो
1: फिल्म कसौटी का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। वर्मा मल्लिक के बोल हैं और धुन बनाई है कल्याणी जी आनंद जी ने। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रही हैं कार्यक्रम सुरंजना।

श्रोताओं, 50 और 60 का दशक हिंदी सिनेमा का वो दौर था जब दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की त्रिमूर्ति का राज था। लेकिन इन तीनों ही महानायकों के सामने अगर कोई शख्सियत बराबरी से आंखें मिलाकर खड़े होते थे तो वो थे प्राण साहब। फिल्म मधुमति का क्रूर राजा उग्र नारायण याद होगा आपको, या फिर राम और श्याम का वो जालिम चंदा। पर्दे पर जब उनकी आंखें सुलगती थी तो दर्शक डर से कांप उठते थे। प्राण साहब की सबसे बड़ी खूबी थी उनका लुक और उनका स्टाइल। वे हर फिल्म के लिए अपनी दाढ़ी, मूंछ, कपड़े, यहाँ तक कि बालों का स्टाइल भी बदल लेते थे। वे हर किरदार को एक अलग पहचान देते थे। कभी सिगरेट के धुएं से छल्ले बनाना तो कभी अपनी उंगलियों को एक खास तरीके से नचाना। उनका हर जेस्चर एक आइकॉनिक बन जाता था। और आइए इसी बात पर सुनते हैं इनकी एक शानदार फिल्म का ये सदाबहार नगमा। ये फिल्म हमने लिया है बड़े दिल, ये गाना हमने लिया है फिल्म बड़े दिल वाला से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर की, वो लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन साहब ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना। प्राण साहब को बॉलीवुड का मास्टर ऑफ डिस्गाइज यानी बहरूपिया भी कहा जाता था। उनके मेकअप किट में हर किरदार के लिए एक नया चेहरा जो छिपा होता था, लेकिन एक ही तरह के नेगेटिव रोल करते करते वे खुद भी कुछ नया करना चाहते थे। और तब साल 1967 में मनोज कुमार साहब ने उन्हें एक ऐसा रोल दिया जिसने इतिहास ही बदल दिया। और फिल्म थी उपकार और उनका किरदार था मलंग चाचा का। एक पैर से लंगड़े, दाढ़ी बड़ी हुई और दिल में देशभक्ति और सच्चाई का समंदर लिए जब मलंग चाचा के रूप में प्राण साहब पर्दे पर आए तो थिएटर्स में बैठा हर शख्स रो पड़ा। जो जनता

तक उन्हें देखकर नफरत से मुंह फेर लेती थी, वो आज उनके इस संजीदा किरदार के आगे नतमस्तक थी। इस एक फिल्म ने प्राण साहब की पूरी इमेज को ही बदल दिया और साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक महान विलेन नहीं बल्कि एक अद्भुत और वर्सटाइल कैरेक्टर एक्टर भी हैं।

फिल्म अगला गाना हमने लिया है फिल्म माफ कीजिएगा अगला गाना हमने लिया है फिल्म सन्यासी से।

फिल्म सन्यासी का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना मन्ना डे की आवाज में, बोल इंदिवर के हैं और धुन बनाई है शंकर जय किशन ने। और श्रोताओं, भारतीय सिनेमा में प्राण साहब के अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े सिनेमाई सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से नवाजा। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें हर पीढ़ी के एक्टर ने अपना गुरु माना। पर्दे का हर विलेन फीका लगेगा जिनके आगे यारी के मायने सिखाए, जिन्होंने दिले के धागे सिनेमा के इतिहास में जो सदा अमर रहेंगे, ऐसे प्राण साहब को हम सभी का शत शत नमन। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरंजना। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव।

0: जय हिंद दीदी।
1: सभी श्रोता बच्चों का कार्यक्रम में स्वागत और पल्लव के आज के इस अंक के साथ मैं आपकी सीमा दीदी। बच्चों, बरसात का मौसम है, चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे जीव जंतु के साथ साथ हम इंसान भी बारिश का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ज्यादा बारिश हमारे लिए परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। वैसे इस मौसम में पढ़ाई का भी अलग मजा है, इसलिए तो आज हम आपको एक जरूरी जानकारी सुनवाने जा रहे हैं। आप बच्चे पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इस विषय

आज ये पेपर बैग पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का प्रतीक बन गए हैं। बच्चों, ये दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, रिसाइकल किए जा सकते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी हैं। इनका निर्माण पेड़ों से होता है। इसके कागज उत्पादन के लिए विशेष रूप से उगाए गए जंगलों से प्राप्त लकड़ी के गुदे का उपयोग किया जाता है। इन वृक्ष फार्म जंगलों में नियमित रूप से नए पेड़ लगाए जाते हैं ताकि भविष्य में कागज के थैलों का उत्पादन जारी रह सके। मोटी कागज की कई परतों और अंदरूनी पट्टियों से बने होने के कारण ये थैले भारी सामान भी आसानी से उठा सकते हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर बच्चों, ये थैले सामान ढोने के लिए भरोसेमंद और दोबारा इस्तेमाल होने वाले बैग के रूप में लंबे समय तक चलते हैं। जब ये खराब हो जाते हैं तो खाली थैलों को सीधे रिसाइकल बिन में डाला जा सकता है, जहां से नए कागज के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसलिए ये पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां तक कि इसे खाद्य अपशिष्ट और बगीचे के कचरे के साथ संसाधित कर पोषक तत्वों से भरपूर कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट के ढेर में भी ये कुछ महीनों में विघटित हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक की थैलियाँ दशकों तक प्राकृतिक वातावरण में बनी रहती है। धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में टूटकर जल मार्गों और मिट्टी में घुल जाती है। इनके कारण हर साल लाखों समुद्री जीव गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं। जलाने पर ये जहरीली रसायन छोड़ते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जानवरों और मनुष्यों दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक बैग उत्पादन की तुलना में कागज के बैग बनाने की प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन की खपत कम होती है। बढ़ते जलवायु संकट में कागज कम उत्सर्जन वाला विकल्प बन जाता है, जो टिकाऊ वानिकी के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में सहायक होता है। इसलिए बच्चों, प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग के इस्तेमाल में ही समझदारी है। इसकी शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हैं। खरीदारी के लिए पेपर बैग का इस्तेमाल करें, अपने बैग खुद घर से लेकर जाएं और दुकानदारों द्वारा दिए गए प्लास्टिक बैग लेने से मना करें। आप दुकानदारों को प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कागज की थैलियां देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों का समूह बनाकर तख्तियां लेकर संदेश फैला सकते हैं। इससे दूसरों को भी अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की प्रेरणा मिलेगी। बच्चों, हमारे देश में आज भी बहुत से लोग प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान से अनजान हैं। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा कर और अपने आसपास के लोगों, अपने घर के लोगों को इस बारे में जागरूक कर सकते हैं। पेपर बैग आपकी खरीदारी और पृथ्वी दोनों की रक्षा करते हैं, साथ ही दिखने में भी आकर्षक होते हैं। प्लास्टिक के बजाय पेपर बैग चुनकर हम प्रदूषण कम करने और साथ ही प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में योगदान दे सकते हैं। वैसे वर्षा की बूंदों से प्रकृति का कण कण जी उठता है, सारी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, रंग बिरंगे और खूबसूरत फूल जीवंत हो उठते हैं।

0: बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। समय कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। टाइम टेबल नहीं बनाना पढ़ाई के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बच्चे पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इस विषय पर आज हमें विस्तार से बता रही हैं मेरी एंड प्रिया। आइए सुनते हैं।
1: प्रिया जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: देखा जाए तो हर बच्चा अलग होता है और उसके पढ़ाई का ढंग भी अलग होता है। काफी बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं, बहाने बनाते हैं, पढ़ने बैठ भी जाते हैं तो व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं। क्या कहेंगी आप?
2: कई बच्चों में ऐसा होता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। इंटरेस्ट आजकल के बच्चों में ज़्यादा देखा जाए तो टीवी, मोबाइल यही सब में रहता है, वो डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर बच्चों को अगर फोकस कराया जाए, उनको बताया जाए कि उनका क्या गोल है, उनका क्या मेन मकसद है उनके लाइफ का, तो शायद वो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेन है, उसके चलते बच्चा का ध्यान आएगा पढ़ाई में। अगर उसको मालूम है उसको आगे क्या करना है,
1: जी
2: उसको बढ़ाने के लिए माँ बाप को भी साथ में बैठना ही पड़ेगा। बिना माँ बाप के बैठे बच्चा नहीं पढ़ेगा आज के डेट में। और माँ बाप भी अगर साथ में बैठ रहे हैं तो उन्हें भी अपना मोबाइल फोन्स या जो भी कुछ कहा जाए, कुछ अगर वो अलग से लेकर के बैठते हैं तो वो सब हटाना पड़ेगा। मेन है कि पेरेंट्स को उसके साथ समय देना ही है बच्चे को, तभी वो बच्चा पढ़ पाएगा। आजकल के समय में भी एक ही दो बच्चे हैं सबके घर में, ज्यादा बच्चा तो है नहीं कि बड़े को देख के छोटा पढ़ रहा है या उसको देख के एक दूसरा तीसरा सब बैठ के पढ़ रहा है एक ग्रुप बना के। अभी वो मैसा माहौल ही नहीं है, तो माहौल अभी थोड़ा दूसरा हो गया है, तो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों को।
0: कई बार देखने में आता है कि पढ़ाई के समय ही भूख लग जाती है, नींद आने लगती है या फिर वॉशरूम जाना होता है।
2: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है। डिसिप्लिन मतलब हर एक चीज का एक टाइम टेबल बनाना होता है। स्टूडेंट लाइफ में तो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको आगे चल के अपने लाइफ में कुछ बनना है, एक सक्सेसफुल पर्सन होना है, तो डिसिप्लिन से ही उसके लाइफ में सब कुछ होगा। सोने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और खाने का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना और सोना तो बच्चों को बहुत ही जरूरी है, और खेलने का भी टाइम एक फिक्स होना चाहिए। प्रॉपर फूड, अगर हेल्दी फूड बच्चा ले रहा है, प्रॉपर स्लीप ले रहा है डेफिनेटली, और अच्छा खेल भी रहा है, तो पढ़ने में भी उसको उतना ही मन लगेगा। अगर ये सब चीजें अगर वो सही से नहीं कर रहा है, नींद अगर पूरा नहीं हो रहा है, अगर टाइम टेबल ही गड़बड़ है, तो डेफिनेटली कुछ तो उल्टा पुल्टा चलेगा ही उसके लाइफ में।
0: बिल्कुल, टाइम टेबल अगर ठीक हो, इसके लिए बच्चों के माता पिता को ध्यान देना जरूरी है।
2: बहुत जरूरी है कि समय से सो जाए बच्चे। रात रात तक आजकल बच्चे मोबाइल में रहते हैं या रात में पढ़ाई करते हैं, दिन में नहीं पढ़ाई करके रात में पढ़ाई करते हैं, दिन भर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और रात में पढ़ने से ज्यादा कुछ उनके दिमाग में बैठता नहीं है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट ही है। सही समय पर अगर भोजन करें, सही समय पर सोएं, तो सही समय पर ही सब कुछ करने से उनके लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रिया जी आपने कि समय से ही सारे कार्य किए जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। माता पिता अक्सर दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करते हैं कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, आपका नहीं हुआ, तो बच्चों में पढ़ाई का प्रेशर तो बढ़ता ही है।
2: पेरेंट्स को ही मालूम है कि उसके बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है। हो सकता है बच्चा मैथ्स में अच्छा ना हो, उसके पीछे पढ़े हुए कि नहीं तुम्हें मैथ साइंस लेके इंजीनियरिंग ही करना है, तो ये तो बड़ा गलत है, बच्चे के साथ अन्याय है। ये बच्चे का खुद का क्या इंटरेस्ट है, बच्चा किसमें आगे बढ़ सकता है, आजकल हर फील्ड में बच्चा के लिए मौका है, किस फील्ड में बच्चा आगे जा सकता है उसका इंटरेस्ट देखना चाहिए पेरेंट्स को, उसके बाद ही उसको बताना है कि उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। डेफिनेटली बच्चों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े हुए पॉसिबल नहीं है। हर फील्ड में उसको जिस फील्ड में भी आगे जाना है उसमें उसको हार्डवर्क करना। अगर वो खेल में ही जा रहा है तो उसको खेल में ही उसको समय बिताना ही है, एक टाइम से उठ करके उसको अपना खाना खाना है, टाइम से उसको प्रैक्टिस भी करना है। अगर वो मैथ्स में अच्छा है तो डेफिनेटली वो मैथ्स करेगा बच्चा, आप उसके पीछे ये नहीं कर सकते कि आपको बायो लेके पढ़ना है, और पांचों उंगलियां तो बराबर बिल्कुल भी नहीं है। हर बच्चा अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ता है। पेरेंट्स को तो ये पहले समझना कि आपका बच्चा किस फील्ड में आगे जा सकता है, उसके बाद उसको उस तरह से गाइड करें। दूसरों से कंपेयर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते क्योंकि हर बच्चा अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह है। आपस में ही भाई बहनों में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, तो दूसरे के बच्चे तो अलग ही बात है।
0: बिल्कुल, यहाँ पर हम कहेंगे प्रिया जी की बच्चों को समय देना जरूरी है। केवल आप स्कूल भेजकर या ट्यूशन भेजकर बच्चों से आशा नहीं कर सकते कि वे पढ़ाई बेहतर करें।
2: ट्यूशन भेजना बिल्कुल ही गलत है अगर बच्चे छोटे हैं तो। कई बार होता है कि माँ बाप बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं कि वहाँ जाके बच्चा एक टाइमली बैठ के पढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो भी वहाँ पर एक स्कूल में जैसे बच्चा पढ़ता है, वैसे ट्यूशन में भी ग्रुप में भी बच्चा पढ़ता है। तो अगर माँ बाप खुद अगर बच्चे के साथ समय बिताएं पढ़ने के लिए कि आज क्लास में क्या पढ़ाई हुआ, टीचर ने क्या पढ़ाया, फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ, सेकेंड पीरियड में क्या हुआ, थर्ड पीरियड में क्या हुआ, कॉपी खोल के दिखाओ, तो वैसे पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ जो बॉन्ड है वो मजबूत होगा। एक समय के बाद क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा माँ बाप के चारों ओर घूमता रहता है, दौड़ता रहता है, उसके गोदी में घूमता है। लेकिन एक समय आता है जब बच्चा 15 साल का हो जाता है, 16 साल का हो जाता है, माँ बाप बच्चे के गोल गोल घूमते हैं, बताओ आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। तो बच्चा जो है माँ बाप से दूर भागता है, वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता है। वो ये एक दिन की बात नहीं है कि बच्चा आपसे दूर हो गया, वो बचपन से ही आपने उसे दूर कर दिया है। वो बॉन्ड आपने अगर बचपन से नहीं बनाया, उसको अपने आप से दूर रखा है, तो बच्चा आपके साथ कैसे घुलेगा मिलेगा। आपको बच्चे को समझना है, बच्चे को भी आपको समझना है, तो उसके लिए आप दोनों को तो एक दूसरे के साथ समय बिताना पड़ेगा। और बच्चे के साथ अगर आप बैठ के पढ़ाई की बातें करें, क्या हो रहा है क्लास में, नहीं हो रहा है, हर एक पीरियड की बात करें, उसके दोस्तों के बारे में उनसे जाने, उनके शिक्षकों के बारे में उनसे जाने, तो उससे ज्यादा अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है पेरेंट्स का बच्चों के साथ। इसलिए ट्यूशन की जरूरत तब होती है जब आप बच्चे को गाइड नहीं कर सकते हैं, बच्चा अगर कहीं डाउट कर रहा है हाई स्कूल में जाकर के, तब। अदरवाइज प्राइमरी लेवल तक पेरेंट्स को ही बच्चों को गाइड करना चाहिए।
1: बिल्कुल, अगर बच्चे के माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी वे एक मार्गदर्शक तो बन ही सकते हैं बच्चों के लिए, है ना।
2: हाँ, यहाँ पर हो सकता है पेरेंट्स अगर कम पढ़े लिखे हैं, उनको जरूरत पड़ सकता है किसी टीचर का, एक प्रॉपर गाइड का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो समय ना दे बच्चों के साथ। वो समय दे कि आज क्लास में पढ़ाई क्या हुआ, वो बातचीत उनसे जरूर करे, कम से कम आधा घंटा समय निकाल के बताए कि तुम क्या लिख करके लाए हो, कॉपी खोलो, दिखाओ मुझे। इतना तो कोई भी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी कर सकता है।
1: बिल्कुल,
2: एटलीस्ट वो बच्चा अपने पेरेंट्स से डरेगा तो कि हाँ मेरे पेरेंट्स कोई है मुझे चेक करने वाले, नहीं तो वो तो उसको मालूम है मुझे कोई देखने वाला नहीं है, वो तो कभी भी बहक सकता है बच्चा।
1: बिल्कुल, तो बच्चों को केवल पढ़ने के लिए कहना और उन्हें समय नहीं देना, ये बहुत गलत है। पढ़ाई के लिए उन्हें मोटिवेट करना जरूरी है। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं प्रिया जी, बच्चे मन लगाकर पढ़ें, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या करें बच्चे?
2: कई सारे बच्चे जो है वो सोचते हैं ना, उसे मन में सोचते हैं कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है ना, पढ़ने बैठते भी हैं तो कई बार होता है कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सबसे बेस्ट है मेडिटेशन करें, थोड़ा देर के लिए बैठ जाएं ज्ञान मुद्रा में, थोड़ा देर के लिए थोड़ा सांस लें, ओम का जो उच्चारण है वो करें 5 मिनट के लिए, उसके बाद बैठ के पढ़ें। इससे कंसंट्रेशन काफी बढ़ता है। जब भी पढ़ने बैठे पहले वो थोड़ा मेडिटेट करें 5 मिनट के लिए, उसके बाद ही पढ़ना शुरू करें। इससे जो भी वो पढ़ेंगे वो माइंड में रिटेन करके वो रख सकते हैं एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, काफी दिनों तक। और जब भी पढ़ने बैठे तो पहले क्या पढ़े हैं उसको पहले एक बार रिवाइज कर लें। जब भी पढ़े जोर जोर से पढ़े, नोट्स बनाए, उसको पढ़ने के बाद फिर से पढ़े कि आज मैंने ये पढ़ा है, और नेक्स्ट डे जब फिर से खोलते हैं कॉपी किताब पढ़ने के लिए, प्रीवियस डे में क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर ले 2-3 मिनट में, फिर नया पढ़ना शुरू करें। इससे क्या होता है कि वो मेमोरी जो है उसका शार्प होता जाता है धीरे धीरे, प्रैक्टिस से ही वो बेटर हो सकता है। अदरवाइज अब सिर्फ आगे पढ़ते जाएंगे, ये मैंने पढ़ा वो मैंने पढ़ा, तो मतलब फिर वो भूलते भी जाएंगे साथ ही साथ, वो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे मेमोरी में।
1: आपने कहा कि बच्चे याद जो करते हैं और भूल जाते हैं, वो ये उपाय अगर करें तो वो जल्द भूलेंगे नहीं, पढ़ा हुआ चीज उन्हें याद रहेगा, ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। बच्चों के माता पिता से आप क्या कहेंगी, बच्चों को किस प्रकार वो पढ़ाई में सहयोग कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं?
2: पढ़ाई में सहयोग के लिए सबसे पहले जरूरी है उसका फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना। अगर बच्चा का फिजिकल हेल्थ अच्छा है, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड अगर रहेगा, बच्चा हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड तभी वो पढ़ सकता है आगे। अगर बच्चा फिजिकली वीक है तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, और फिजिकली वीक बच्चा तभी होता है जब वो प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है या प्रॉपर सो नहीं रहा है। तो प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट, अगर जंक फूड को हटा दिया जाए, आइसक्रीम स्वीट्स वगैरह ये सबको हटा दिया जाए और बच्चा को प्रॉपर फूड दिया जाए, हेल्दी फूड और एक प्रॉपर स्लीप दिया जाए, तो बच्चा हेल्दी हो जाता है। और हेल्दी जब हो जाता है तो उसको पढ़ने में मन लगेगा। और कई बार होता है कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल फोन या टीवी ऑन कर दिया बच्चा खा रहा है, तो उससे उसका खाना में भी मन नहीं लगता है। मतलब वो जो खाना खा रहा है वो प्रॉपर उसके शरीर में लगेगा नहीं। वो अगर खाना खा रहा है उसको फूड एंजॉय करना है, उस चीज को एंजॉय करे और खेलने जरूर जाए। फिजिकल हेल्थ के लिए उसको एक्सरसाइज और खेलना बहुत जरूरी है। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, या जो भी अगर स्कूल में बच्चा जा सकता है, या डांसिंग क्लासेस के लिए जा सकता है, वो सब बहुत जरूरी है। सिर्फ बैठ करके पेंटिंग या ड्रॉइंग उससे नहीं चलेगा, वो भी ठीक है करना चाहता है तो कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, तभी वो बच्चा पढ़ाई करेगा अच्छा करेगा। और पढ़ता है जब भी बच्चा, पेरेंट्स को क्या करना है, बच्चे के साथ बैठे, खुद मोबाइल ना देखें। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो अपना मोबाइल को भी आप साइड में हटा दें। रात में आप भी मोबाइल देखेंगे तो बच्चा भी, उसका भी ध्यान रहता है बच्चे का।
1: तो माहौल देना जरूरी,
2: माहौल देना बहुत जरूरी है। एक फैमिली में एक एटमोसफेयर रहेगा पढ़ाई लिखाई का, एक टाइम टेबल एक बना दें कि इस समय बैठ के पढ़ना है, इस समय बैठ के हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। समय जब एक साथ देंगे बहुत ही अच्छा, एक समय से सब कुछ होने लगेगा बच्चा के साथ, उसके लाइफ में अपने आप से डिसिप्लिन आ जाएगा और बच्चे को हर काम में मन लगेगा, वो सिर्फ पढ़ाई क्या हो, हर चीज में उसको मन लगेगा और वो आगे बेहतर ही करेगा अपने लाइफ में।
1: किसी भी चीज के लिए एंजॉय करना सिखाना चाहिए बच्चों को, है ना।
2: एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना है किसी भी चीज के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। और कभी भी कुछ नेगेटिव ना बात करें अपने परिवार के बारे में भी। अगर बच्चों को अपने पारिवारिक चीजों के बारे में जो बड़े बात करते हैं उससे अगर बच्चों को अगर दूर रखा जाए,
1: शामिल ना किया जाए
2: तो बच्चों के मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है ये सब चीजों की बातों का। ये पॉजिटिव एनर्जी बच्चों को देना बहुत जरूरी है। ये सब नेगेटिविटी बच्चों के माइंड में अगर ना जाए तो एक प्रॉपर ग्रोथ बच्चा का होता है।
1: बिल्कुल। परीक्षा के लिए क्या विशेष तैयारी की जा सकती है ये आप बच्चों को बता दे।
2: परीक्षा के लिए तो सिलेबस होता ही है, सिलेबस पे देखना पड़ता है कि हमारे कितना चैप्टर्स है और उसको कितने दिनों में कंप्लीट करना है, उसको टाइमली अरेंज करके करना है, तो वो सब तो बातें है ही। और बच्चा जिसमें वीक है उसमें उसको ज्यादा ध्यान देना है, ये तो कॉमन सी बातें हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है जब तक उसको बच्चा लिखे ना, लिख के ही एग्जाम होता है, तो बच्चे को लिखने का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होना है। हैंड राइटिंग आजकल सोचते हैं बच्चे लोग, अब तो टाइपिंग का जमाना हो गया, हैंड राइटिंग क्या करें, लेकिन नहीं, हैंड राइटिंग भी उतना ही जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीड और एक्यूरेसी, लैंग्वेज की एक्यूरेसी, वो सब इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में आपको स्पीड चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपको एक्यूरेट होना है, तो आपको एक टाइमली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आप रिवाइज आपको उसी तरह से करना है। और छुट्टी के दिनों में आप समय ना बर्बाद करें, बाकी लोग शायद सो जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो वो सब दिनों में बच्चों को पढ़ाई करना ही, एक टाइम जो पढ़ने का है वो तो पढ़ने का ही है, इंटरटेनमेंट का टाइम। हाँ, सबसे बेस्ट टाइम तो सुबह का ही टाइम होता है। कितना भी आप सुबह स्कूल जा रहे हो, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा अगर समय निकाल के पढ़े तो उससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता, वो बेस्ट टाइम है पढ़ने के लिए, आपके मेमोरी में वो लाइफ टाइम रह जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बच्चों का मन पढ़ाई में लगाना आसान नहीं है, लेकिन अगर बच्चे पर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो उनका भविष्य बेहतर हम जरूर बना सकते हैं। सही टाइम टेबल बनाना, साथ ही उन्हें सभी तरह के

0: तनाव से दूर रखना। ये ऐसी कुछ बातें हैं जिससे बच्चे का मन पढ़ाई में हमें लगता है जरूर लगेगा। तो प्रिया जी, बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगे, इस विषय पर आपने विस्तार से बताया, हमें उम्मीद है बच्चों को जरूर उपयोगी लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सीमा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: बच्चों, ये थी एक शिक्षिका मेरी एंड प्रिया, जो बता रही थी कि बच्चे पढ़ाई में मन कैसे लगाकर अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और इस जरूरी जानकारी के बाद आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे पहले समाचार हिंदी में और फिर अंग्रेजी में बारी बारी से। 10:10 का वक्त होगा विश्व दर्पण समाचार का। 10:20 पर श्रोताओं हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और दिन में 11:05 पर सुनेगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। 12:05 का वक्त होगा कार्यक्रम भावगीत का, और 12:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम अंगना

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जनकेंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की भी शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक विशाल अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को नवंबर 2025 से प्रत्येक महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त सदस्य समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और खेलों में फीफा विश्व कप में अमेरिका के कंसास में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले आज सुबह फ्लोरिडा में खेले गए एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराया और सेमीफाइनल में जगह बना ली। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। अब सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमरीका ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में एक जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। तूफान बावीन पूर्वी चीन के तटीय इलाके से टकराया। लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से मुकाबला। और टेनिस में लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक

0: कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लैक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लैक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा कल उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फू क्वोक द्वीप के पास रट नगुआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हॉर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तूफान बावी के कल रात पूर्वी चीन के तटीय शहर ताइझोउ में आने की खबर है। इस बीच लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: इससे पहले तूफान बावी जापान के दक्षिण साकिशिमा द्वीप से टकराया और उत्तरी ताइवान के पास से गुजरा। हालांकि यह अब उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ तेज वर्षा का खतरा बना हुआ है। सरकारी मीडिया के अनुसार झेजियांग प्रांत से 17 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा फूजियान प्रांत और बीजिंग से 1-1 लाख से अधिक तथा शंघाई से करीब 34,000 लोगों को भी निकाला गया है। जापान और ताइवान में अब तक इस तूफान से किसी की मृत्यु की खबर नहीं है। हालांकि बावी के असर से दक्षिण पश्चिम मानसून के और सक्रिय होने के कारण फिलीपींस में भारी बारिश से 17 लोगों की मौत हो गई। ताइवान के अग्निशमन विभाग के अनुसार 113 लोग घायल हुए हैं। इनमें अधिकांश लोग तेज हवाओं के दौरान मोटरसाइकिल या साइकिल से गिरने, फिसलने या किसी वस्तु की चपेट में आने से घायल हुए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: वेनेजुएला में पिछले महीने आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या अब 4,300 से अधिक हो गई है। 24 जून को ला ग्वाइरा में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए थे। ये एक सदी से अधिक समय में वेनेजुएला के सबसे भीषण भूकंप माने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सप्ताह 13 लाख लोगों की मदद के लिए 29,60,00,000 अमरीकी डॉलर की राहत राशि जुटाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने मंगलवार को ला ग्वाइरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लापता बच्चों की मां से भी मुलाकात की। उधर दक्षिण पूर्वी स्पेन के अंडालूसिया क्षेत्र में भीषण जंगल की आग को काबू में करने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी और सैन्य कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। ये आग हाल के दशकों में देश की सबसे घातक जंगल की आग में से एक बन गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी जागृति, खेल खबरों में सबसे पहले चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। तो फीफा विश्व कप में अमेरिका के कंसास में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले आज सुबह फ्लोरिडा में खेले गए एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। अब सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टिनिया म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफिनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और जागृति, अगर बात करें क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। तो जागृति, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। तूफान बावी पूर्वी चीन के तटीय इलाके से टकराया। लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विश्व दर्पण समाचार श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:20 हो रहे हैं। फिल्म संगीत हम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे।
6: पिन दे।
7: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें। तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी

नमस्कार श्रोताओ, फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है। आज के संगीत में सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। श्रोताओ, सिनेमा की दुनिया में सितारे तो बहुत आए और गए। कुछ अपनी अदाकारी के लिए जाने गए तो कुछ अपनी स्टारडम के लिए। लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब थिएटर्स के बाहर लगी खिड़की पर हाउसफुल का बोर्ड हफ्तों नहीं महीनों लगा रहता था। एक ऐसे अभिनेता जिनकी फिल्में सिनेमा घरों में 25 हफ्ते नहीं बल्कि सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाया करती थी। जी हाँ श्रोताओ, आज फिल्म संगीत के इस अंक में हम नमन कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के असली जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार साहब को, आज उनकी पुण्यतिथि पर। श्रोताओं, एक जमाना था जब डिस्ट्रीब्यूटर्स आंख बंद करके उनकी फिल्में खरीद लिया करते थे। कहते थे कि अगर पोस्टर पर राजेंद्र कुमार का चेहरा है तो पैसा वसूल होना तय है। 12 जुलाई 1999 को भले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपनी फिल्मों, अपनी मखमली आवाज और अपनी सादगी के जरिए वे आज भी हर सिनेमा प्रेमी के दिल में जिंदा हैं। आइए श्रोताओं, आज उनके संघर्ष, उनकी दीवानगी और उनके इस बेमिसाल संगीत में सफर को हम करीब से महसूस करते हैं। किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां लगातार बजती रहें। सितारे तो आसमान में चमकते हैं पर जुबली कुमार जैसे फनकार दिलों पर राज करते हैं। बातें अभी और भी करेंगे श्रोताओं, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म आरजू का ये गाना।

श्रोताओं, जो चमक हमें पर्दे पर दिखती है उसके पीछे अक्सर आंसुओं और संघर्ष की एक लंबी दास्तां होती है। राजेंद्र कुमार जी का जन्म 20 जुलाई 1927 को अविभाजित भारत के सियालकोट में हुआ था। इनका असली नाम राजेंद्र कुमार तुली था। इनके दादा कराची के व्यवसायी थे, लेकिन 1947 के विभाजन ने सब कुछ बदल दिया। वतन छूटने का दर्द लिए उनका परिवार दिल्ली आ गया। दिल्ली में सब कुछ नए सिरे से शुरू करना था, लेकिन युवा राजेंद्र की आंखों में कुछ और ही सपने मचल रहे थे, रूपहले पर्दे के सपने। सिर्फ 50 रुपये जेब में लेकर वे सपनों की नगरी बम्बई आ गए, और बम्बई में रहने का ठिकाना नहीं था, जेब खाली थी। उन्होंने डायरेक्टर H.S. रवैल के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करना शुरू किया, जहाँ उन्हें महीने के केवल 150 रुपये मिलते थे। कई रात उन्होंने भूखे पेट या सिर्फ वड़ा पाव खाकर गुजारी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और फिर साल 1957 में आई वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया, मदर इंडिया। महबूब खान की इस कालजयी फिल्म में राजेंद्र कुमार ने नरगिस के संस्कारी और सीधे बेटे रामू का किरदार निभाया। फिल्म सुपरहिट रही और इस सीधे साधे नौजवान ने अपनी संजीदा अदाकारी से पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और यहां से शुरू हुआ जुबली कुमार का वो दौर जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। आइए अगला गाना हम आपको सुनवाते हैं फिल्म झुक गया आसमान से। कौन है जो सपनों में आया।

फिल्म झुक गया आसमां का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को कलमबद्ध किया है और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और आज कार्यक्रम फिल्म संगीत में हमने शामिल किए हैं राजेंद्र कुमार साहब के कुछ चुनिंदा और बेहद खूबसूरत गाने। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आप आए बहार आए का ये टाइटल ट्रैक, जिसे गाया एक बार फिर से रफ़ी साहब की आवाज़ ही है और बोल लिखे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वाह, क्या गाना है और क्या अदायगी है। श्रोताओं, राजेंद्र कुमार साहब सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे उस दौर के युवाओं के रोमांटिक आइकन भी थे।

60 का दशक पूरी तरह से राजेंद्र कुमार के नाम था। दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, आरजू, गीत और संगम, एक के बाद एक लगातार ऐसी फिल्में आईं जो सिनेमाघरों में महीनों से टस मस भी नहीं हुई। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे पर्दों पर जज्बातों को इस कदर जीवंत कर देते थे कि थिएटर में बैठा हर दर्शक उनके दर्द के साथ रोने लगता था और उनकी खुशी में मुस्कुराने लगता था। मोहम्मद रफी साहब की आवाज राजेंद्र कुमार के चेहरे पर ऐसी सचती थी मानो दोनों एक ही जान हो, चाहे वो दर्द भरे नगमे हो या फिर प्यार का इजहार। राजेंद्र कुमार ने रोमांस को एक नई शराफत और गहराई दी।

फिल्म अनजाना का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना, रफ़ी और मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, समय बदलता है और समय के साथ कलाकार की भूमिका भी बदलती है। 70 के दशक के अंत में जब राजेंद्र कुमार जी ने महसूस किया कि अब बतौर मुख्य अभिनेता उनका दौर सिमट रहा है, तो उन्होंने खुद को पीछे नहीं खींचा, उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा। उन्होंने अपने बेटे कुमार गौरव को लॉन्च करने के लिए साल 1981 में फिल्म बनाई लव स्टोरी। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। राजेंद्र कुमार ने एक पिता और एक निर्माता के रूप में ये साबित कर दिया कि उनमें सिनेमा की कितनी गहरी समझ थी। उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे को बल्कि कई नए तकनीशियनों और कलाकारों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया। भारत सरकार ने सिनेमा में उनके इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा। श्रोताओं, आज जब हम राजेंद्र कुमार साहब की पुण्यतिथि पर उनके इस शानदार सफर को याद कर रहे हैं, तो दिल में एक अजीब सा सूनापन भी महसूस होता है। वो सादगी भरा दौर, वो मखमली नगमे और वो पर्दे पर तसल्ली से की जाने वाली अदाकारी आज के इस भागम भाग वाले सिनेमा में कहीं खोसी गई है। अब आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगम का ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर और वैजयंती माला ने, वो लिखे हैं असर जयपुरी ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

12 जुलाई 1999 को भले ही राजेंद्र कुमार हमसे दूर चले गए, लेकिन वे जो विरासत छोड़ गए वो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। श्रोताओं, चलते चलते बस इतना कि सितारे बदलते हैं, दौर बदलते हैं, लेकिन कुछ फनकार वक्त की रेत पर अपने कदमों के ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जिन्हें कोई लहर मिटा नहीं सकती। राजेंद्र कुमार साहब हिंदी सिनेमा के इतिहास का वो स्वर्णिम पन्ना है जो हमेशा चमकता रहेगा। सिनेमा के आकाश में जुबली का वो चांद हमेशा मुस्कुराएगा। जब जब उठेगा जिक्र सच्चे अभिनय का, राजेंद्र कुमार का नाम अदब से लिया जाएगा। सुरों और जज्बातों के इस महानायक को हमारा शत शत नमन। लव्स कम पड़ जाते हैं जब हुस्न और इश्क का तराना होता है, और पर्दे पर जब जुबली कुमार मुस्कुराते थे तो पूरा जमाना उनका दीवाना हो जाता था।

0: फिल्म साजन बिना सुहागन का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना। कीजिए ये सुदास अनुराधा पौडवाल और उषा खन्ना की आवाज़ों में इंदिवर के बोल हैं और धुन बनाई है उषा खन्ना ने। और श्रोताओं इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दीपिका को अनुमति। नमस्कार। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में उन्होंने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के मंच को भी संबोधित किया और दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों से बातचीत की। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा थी। श्री मोदी ने ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रूपये की जन केन्द्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान में भी शामिल हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अप्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे।

एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में दो दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में निर्धारित अवधि समाप्त होने वाले खराब, सड़े गले, दूषित और अन्य असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के आरोप लगाए गए हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई थी। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फूकोक द्वीप के पास अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वहीं एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

दोस्तों, कहते हैं हर क्षण भविष्य का बीज है। अक्सर हम समय का प्रयोग तीन तरह से करते हैं। कोई समय का सदुपयोग करता है, कोई समय बिताता है और कोई समय को नष्ट करता है। और यदि हम सुखी और शांत जीवन चाहते हैं तो हमें न तो व्यर्थ में चिंतन करना चाहिए, न ही व्यर्थ में कोई चीज का वर्णन और न ही व्यर्थ में अपना समय ही बिताना चाहिए। वर्तमान का हर क्षण भविष्य का निर्माण कर रहा है, इसीलिए हम आज जैसा करेंगे कल वैसा ही बनेगा। श्रोताओं, हर साल 12 जुलाई को पेपर बैग डे मनाया जाता है।

इस दिन को मनाने का उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना। प्लास्टिक हमारी जिंदगी में इतनी गहराई से जुड़ गया है कि सुबह उठकर जिस ब्रश से हम दांत साफ करते हैं, उससे लेकर रात को जिस खिलौने से खेलकर हम सोते हैं, वह सब प्लास्टिक का ही बना होता है। समस्या यह नहीं है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, असली समस्या है सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी वह प्लास्टिक जिसे हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट, जूस के स्ट्रॉ और अन्य पॉलिथीन की थैलियां। कहने का मतलब है, आज हम संवारेंगे तो हमारा भविष्य संवरेगा, सुरक्षित रहेगा।

एक बार फिर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह की आवाज में। विनोद पांडे की रचना थी। इस गीत को संगीतवत किया था रघुनाथ सेठ और धीरज ने। श्रोताओं, वर्ल्ड पेपर डे मनाने का उद्देश्य है पर्यावरण के लिए नुकसानदायक प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना। पर्यावरण के लिए सुरक्षित पेपर बैग के इस्तेमाल के लिए इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है। लोगों को प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मौजूदा दौर में पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या के बीच इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। प्लास्टिक बैग से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। इसे गलने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, इसीलिए प्लास्टिक की जगह पेपर बैग जैसे इको फ्रेंडली विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। प्लास्टिक के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ही जरूरी है। पेपर बैग जैसे सस्टेनेबल ऑप्शन चुनने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। तभी तो हम नदियां, पहाड़, झील, पेड़ पौधे की खूबसूरती को निहार सकेंगे।

फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। दक्षिण भारत की सुर कोकिला इस जानकी 6 दशक तक सुरों से सजाया भारतीय सीने संगीत का सफर वो अब हमारे बीच नहीं रही। 88 वर्ष की उम्र में मैसूर में उनका निधन हो गया। उनके जाने से सिर्फ दक्षिण भारतीय सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय संगीत जगत ने अपनी सबसे मधुर और संवेदनशील आवाजों में से एक को खो दिया। करोड़ों प्रशंसकों के लिए वह केवल एक गायिका नहीं बल्कि जानकी अम्मा थी, जिनकी आवाज ने प्रेम, विरह, भक्ति और हर भाव को अपनी पहचान दी। 23 अप्रैल 1938 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पल्ला पाटला गांव में जन्मी एस जानकी ने मात्र 9 वर्ष की आयु में पहली बार मंच पर प्रस्तुति दी थी। फिर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और 20 वर्ष की उम्र में चेन्नई पहुंचकर संगीतकार आर सुदर्शनम के साथ काम शुरू किया। 1957 में तमिल फिल्म विधिहीन पिलायाटू से प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई और फिर सफलता का ऐसा सिलसिला चला जो करीब 60 वर्षों तक जारी रहा।

मेरी जंग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, एस जानकी और जावेद जाफरी की आवाज में। बोल थी आनंद बख्शी के, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं मशहूर पार्श्व गायिका एस जानकी के बारे में। उन्होंने 20 भाषाओं में 48,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड कर भारतीय संगीत इतिहास में एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित लगभग हर प्रमुख भारतीय भाषा में उनकी आवाज गूंजी। इस जानकी को 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें अनेक राज्य और फिल्म पुरस्कार भी मिले। 2013 में उन्होंने पद्म भूषण स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय संगीत में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। यह फैसला उनके आत्मसम्मान और अपने कला सफर के प्रति विश्वास को दर्शाता है। श्रोताओं, उनकी मधुर और संवेदनशील आवाज हमेशा हमेशा इन फिजाओं में गूंजती रहेगी।

0: your story, but everybody will sing with me.
1: Okay.

0: ये थे इस जानकी और मोहम्मद अजीज। आखिरी रास्ता फिल्म का ये गीत था। बोल थी आनंद बख्शी के, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 102.4 MHz पर आकाशवाणी जमशेदपुर के कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। दोस्तों, आज मशहूर अभिनेत्री और मखमली आवाज की मलिका सुलक्षणा पंडित की जयंती है। सुलक्षणा के पिता प्रताप नारायण पंडित एक कुशल शास्त्रीय गायक थे और उनके चाचा पंडित जसराज मशहूर शास्त्रीय गायक थे।

संगीत का हुनर सुलक्षणा पंडित को विरासत में मिला था। उन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। सुलक्षणा ने 1975 में फिल्म उलझन से संगीत की दुनिया में कदम रखा था। इसमें उनके साथ संजीव कुमार थे। उलझन फिल्म से सुलक्षणा पंडित का अभिनय का सफर शुरू हुआ। उन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया था। उनकी प्रमुख फिल्मों में हेरा फेरी, अपनापन, खानदान, वक्त की दीवार और फांसी थी। सुलक्षणा पंडित न केवल अभिनेत्री थी बल्कि एक बेहतरीन गायिका भी थी। उन्होंने अपनी फिल्मों में कई गाने गाए जो बहुत ही पसंद किए गए, लोकप्रिय हुए। 1967 की फिल्म तकदीर में लता मंगेशकर के साथ उनका गाना सात समंद पार से खूब पसंद किया जाता है। लता जी ने सुलक्षणा की गायकी की तारीफ भी की थी और कहा कि तुम्हारी आवाज में जादू है। 1976 में फिल्म संकल्प के गाने तू ही सागर तू ही किनारा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उनके कई हिट गाने जैसे मौसम मौसम, लवली मौसम, थोड़ी सी बेवफाई का ये गाना और दूर का राही फिल्म का बेकरार दिल आज भी लोगों को खूब पसंद आता है। तो चलिए सुनते हैं उनकी आवाज में और उनकी अभिनीत फिल्म फांसी का ये गीत।

मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजें थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर। ये गीत आप सुन रहे थे गुलशन बावरा का लिखा हुआ, फिल्म थी फांसी। श्रोताओं, हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 24 जुलाई को सुबह 10:45 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी 16 जुलाई से जैक की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जैक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले पेपर में मानसिक योग्यता परीक्षा तथा दूसरे पेपर में शैक्षिक योग्यता परीक्षा ली जाएगी। दोनों पेपर में 90-90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। इस तरह परीक्षा कुल 180 अंकों की होगी। मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति का योजना का उद्देश्य सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की मेघावी छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना होता है। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस प्रकार 4 वर्षों में प्रत्येक चयनित छात्र छात्रा को कुल 48,000 रुपए मिलते हैं। योजना के तहत हर वर्ष राज्य भर से 5,000 मेघावी विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 विद्यार्थी का चयन होता है। छात्राओं के लिए 30% सीटें आरक्षित है। छात्रवृत्ति का लाभ अगले वर्षों तक जारी रखने के लिए विद्यार्थियों को प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना

चॉक एंड डस्टर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संदेश शांडिल्य, अलका याग्निक, श्रद्धा मिश्रा और संजीत मिश्रा की आवाज में। जावेद अख्तर की रचना को संगीतवत किया था संदेश शांडिल्य ने। श्रोताओं, मानसून की बारिश जहां गर्मी से राहत लेकर आती है, वहीं अपने साथ कई गंभीर बीमारियां भी साथ लेकर आती है। जल जमाव, गंदगी, दूषित पानी के कारण मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया और वायरल फीवर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने MGM अस्पताल और सदर अस्पताल को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। MGM अस्पताल के मेडिसिन विभाग में 120 बेड तथा सदर अस्पताल में 100 से अधिक बेड की व्यवस्था की गई है। प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और जागरूकता अभियान तेज कर दिए गए हैं। श्रोताओं, बच्चों और बुजुर्गों में तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टी, दस्त या शरीर पर लाल चकती जैसे लक्षण दिखाई दे तो इसे सामान्य वायरल मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मरीजों की समय पर CBC, मलेरिया, डेंगू की जांच कराना आवश्यक है ताकि बीमारी की सही पहचान और उसका तत्काल उपचार शुरू किया जा सके। बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है साफ सफाई और सतर्कता। घर, छत, आंगन में कहीं भी पानी जमा नहीं होने दें। कूलर, गमले, टायर और पानी रखने वाले बर्तनों की नियमित साफ सफाई करें। मच्छरदानी का उपयोग करें। पूरी बांह के कपड़े पहनें। खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करें। केवल स्वच्छ उबला पानी पिएं और हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। यही छोटे छोटे उपाय हमें बड़े खतरों से बचा सकता है।

जयदीप साहनी के बोल को आप सुन रहे थे विशाल शेखर के धुन पर बेनी दयाल की आवाज में। फिल्म थी बेफिक्रे। और श्रोताओं, समय का ये इशारा है कि अब हमें जल्द लेनी होगी अनुमति, तो चलते चलते एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहते हैं। झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में सफलता हासिल की है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अब सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की बेहतर तैयारी के लिए 1,50,000 रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। विभाग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई शाम 6 बजे तक है। सरकार ने इस बार योजना के नियमों में संशोधन करते हुए छात्रों के लिए दायरा बढ़ा दिया है। पहले मिलने वाली 1,00,000 रुपए की सहायता राशि अब बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दी।

गई है। योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को 2,50,000 से बढ़ाकर 8,00,000 रुपए कर दिया गया है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही मान्य लिए जाएंगे। इनके लिए दस्तावेजों की जरूरत होगी, वो इस प्रकार है: ऑनलाइन जारी आवासीय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जारी जाति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जारी आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक सर्टिफिकेशन, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एडमिट कार्ड और परीक्षा पास करने का प्रमाण रिजल्ट सीट। और श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से हमें दीजिए अनुमति।

Wood. आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भावगीत। ऐ धड़कनों अब और भी कोई ठिकाना ढूंढो, अब हमारे दिल से हम जुदा हो गए हैं। कैसे अर्ज करूं मैं अपने एहसास को, बस पढ़ लीजिए मेरी नजरों में आरजू हमारी, सुन लीजिए खामोश जज्बात, क्योंकि कुछ एहसास अल्फाजों में कैद नहीं हो सकते।

गुलामी फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गुलजार की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सवारा था। पहली बार मैंने आईने में खुद को नहीं पाया, पहली बार मैंने देखा मेरी सफर तन्हा न थी, पहली बार मुझे लगा मीठी हवा भी बोलती है, हर पल कुछ अजीब से एहसासों से घिरा मेरा मन उलझन में है, क्यों सब कुछ बदला बदला सा है, क्यों चाहता है मेरा दिल बार बार इन्हीं बातों को महसूस करना।

कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाजें थी, समीर के बोल थी, नदीप शवन ने धुन सजाई थी। फिल्म थी दिल है तुम्हारा। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भावगीत आकाशवाणी जमशेदपुर से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ कहा न तुमने पर मैंने सुन लिया है, कुछ कहा न तुमने पर मैंने सुन लिया है, निगाहों ने तेरी नजरों से मेरी कुछ तो कहा है। ऐ मेरे हमनशी, इशारों इशारों में क्या कह दिया कि दिल के गुलिश्ता में बस आपकी हसरतों चाहतों अदा और नूर के फूल हैं। आहिस्ता आहिस्ता मंजर कुछ ऐसे बदल गए हैं कि लगता है इससे पहले तो कुछ था ही नहीं। दास्ताने दिल के साथ साथ नजरों की अहमियत भी बदल गई है।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे ताग द फायर फिल्म का। समीर के बोल थी, राजेश रोशन ने धुन सजाई थी। क्यों मन में बेताबियां हैं, क्यों ये दिल चाहता है आपसे बहुत कुछ कहना, क्यों आपकी पहली नजर बार बार मेरी नजरों के सामने आ जाती है, आपका कुछ इस अदा से देखना, चलते रुकते सोती जागती भीड़ तन्हाई हर पल मन में बस यही बात याद आते हैं।

बादल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। संगीत दिया था अनु मलिक ने और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भावगीत यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 होने वाले हैं।

स्वस्थता और मानसिक शांति को हमेशा जिंदा रखने के लिए हम कुछ टिप्स अपना सकती हैं, जैसे कि खुद के लिए मी टाइम। हम तो अक्सर परिवार और काम के चक्कर में खुद को भूल ही जाती हैं। दिन भर में कम से कम 20 से 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखें। इस दौरान वो काम कीजिए बहनों जो आपको सच में खुशी देता है, जैसे चाय का कप लेकर शांति से बैठना, या फिर अपनी पसंद का गीत सुनना, कोई किताब पढ़ना या बागवानी करना। ये समय आपकी मानसिक बैटरी को रिचार्ज करता है। हर चीज में परफेक्शन होने का दबाव मत लीजिए बहनों, क्योंकि ये केवल तनाव देता है। जैसे कि बहुत लोगों को परफेक्ट माँ बनना है, किसी को परफेक्ट बहू बनना है, किसी को परफेक्ट एम्प्लॉय बनना है। परफेक्ट बनने का दबाव मत रखिए अपने ऊपर, कोशिश कीजिए। ये स्वीकार कीजिए कि आप एक इंसान हैं, सुपर वुमन नहीं। अगर किसी दिन घर बिखरा हुआ है या काम में थोड़ी देर हो गई है तो खुद को दोष मत दीजिए। सब कुछ अकेले और बिल्कुल परफेक्ट करना है कि सोच को छोड़ना ही उम्मीद को जिंदा रखने की पहली सीढ़ी है। अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां ओढ़ने से बचिए। अगर आप थकी हुई हैं या किसी काम के लिए समय नहीं है तो शालीनता से ना कहना सीखें, चाहे घर के काम हो या दफ्तर के। दूसरों से मदद मांगने में कभी संकोच मत कीजिए। हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों के इंतजार में रोज की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देती हैं। आज आपने कोई अच्छी नई डिश बनाई है, ऑफिस का कोई पेचीदा काम निपटाया, या बस बच्चों के साथ खुलकर हंस ली, इन छोटी जीतों को भी महसूस कीजिए और खुद की पीठ थपथपाइए। अपने दिल की बात, अपनी चिंताएं और अपनी उम्मीदें साझा करने के लिए दोस्तों या करीबियों का एक ऐसा ग्रुप जरूर रखिए जहां आपको जज ना किया जाए। जब हम अपनी जैसी दूसरी महिलाओं से बात करते हैं तो एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, जिससे मन का बोझ हल्का होता है और नई उम्मीद जागती है। और बहनों, हाँ, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर में पोषण की कमी होगी तो मानसिक रूप से भी थकान और निराशा महसूस होने लगेगी। भरपूर नींद लीजिए, संतुलित आहार लीजिए और थोड़ा सा वॉक या योग जरूर कीजिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने पर उम्मीद और सकारात्मक विचार अपने आप टिके रहते हैं, इसलिए उम्मीद का दिया जला के रखिए। उम्मीद किसी दफ्तर की कुर्सी या रसोई के चूल्हे की मोहताज नहीं होती। ये तो मन का वो दिया है बहनों, जिसे अगर महिलाएं खुद के लिए जलाना सीख लें तो पूरा घर रोशन रहता है। अब देखिए ना, ये खूबसूरत सा गीत मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ सुनिधि चौहान को, जिसे सुनकर आपके भी मन को बहुत अच्छा लगेगा। फिल्म का नाम है सिर द मेलोडी ऑफ लाइफ।

0: बहनों, जैसे हमारे परिवार को हमसे उम्मीद रहती है, वैसे हम पूरा करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन कई बार अनदेखी भी होती है हमसे या हमारे अपनों से। रिश्तों को चाहिए देखभाल। फैमिली ऑडिट से बनेगा प्यार का घर। ये वार्ता आइए सुनते हैं वार्ताकार सुमन गुप्ता से।
1: नमस्कार बहनों, अंगना के इस आत्मीय और जीवन को सवारने वाले प्रसंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर, हर रिश्ते और हर दिल से जुड़ा है। रिश्तों को चाहिए देखभाल। फैमिली ऑडिट से बनेगा प्यार का घर। कहते हैं, घर ईंट पत्थर से नहीं, रिश्तों की गर्माहट से बनता है। लेकिन जैसे घर की दीवारों को समय समय पर मरम्मत चाहिए, वैसे ही रिश्तों को भी देखभाल और समीक्षा चाहिए। मनुष्य का जीवन रिश्तों के बिना अधूरा है। परिवार वो पहली पाठशाला है जहां हम बोलना, समझना और प्रेम करना सीखते हैं। माता पिता का स्नेह, भाई बहनों का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद, यही तो परिवार की असली पूंजी है। लेकिन आज के समय में जब जीवन की गति बहुत तेज हो गई है, तो हम अनजाने में ही अपने रिश्तों की उपेक्षा करने लगे हैं। हम घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि रिश्तों को केवल निभाया नहीं जाता, बल्कि उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। फैमिली ऑडिट क्या है? बहनों, जब हम ऑडिट शब्द सुनते हैं तो हमें दफ्तर, फाइलें या खाते याद आते हैं। लेकिन फैमिली ऑडिट कोई सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि दिल से दिल की जांच है। जैसे किसी संस्था में ऑडिट करके ये देखा जाता है कि कहाँ कमी है और क्या सुधार किया जा सकता है, वैसे ही फैमिली ऑडिट हमें ये सोचने का अवसर देता है कि हम अपने परिवार के प्रति कितने संवेदनशील हैं। क्या हम अपने माता पिता की बात ध्यान से सुनते हैं? क्या हम बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपने शब्दों से किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे आदि। फैमिली ऑडिट का मतलब रिश्तों में संवाद कैसा है। क्या हम एक दूसरे की बात सुनते हैं? घर में सम्मान है या सिर्फ आदेश, प्यार है या सिर्फ जिम्मेदारी। सरल शब्दों में कहे तो घर के रिश्तों का ईमानदार मूल्यांकन ही फैमिली ऑडिट है। क्यों जरूरी है फैमिली ऑडिट? आज की तेज जिंदगी में हम सब इतने व्यस्त हैं, मोबाइल में, काम में, पढ़ाई में, तनाव में आदि में इतने व्यस्त हैं कि रिश्तों के लिए समय कम पड़ता जा रहा है। नतीजा, छोटी छोटी बातों पर तकरार होती है,

0: चुप्पी की दीवारें, नाराजगी का बोझ और प्यार की कमी एक ऐसी पंक्ति है जहां बातों की जगह चुप्पी ले ले, वहीं रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। फैमिली ऑडिट इन टूटनों को जोड़ने का मौका देता है। फैमिली ऑडिट कैसे करें, वो भी सरल तरीके से। पहला, संवाद की जांच जरूरी है। बहनों, घर में रोज खाना बनता है, लेकिन क्या रोज बातचीत होती है? क्या हम बच्चों की बातें ध्यान से सुनते हैं? क्या पति पत्नी एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं? क्या बुजुर्गों की राय का सम्मान होता है? संवाद वो धागा है जो रिश्तों की माला को बांधे रखता है। दूसरा, समय का ऑडिट। पूरे दिन में हम परिवार को कितना समय देते हैं? एक साथ बैठकर खाना खाना, साथ हंसना, दिन भर की बातें साझा करना, ये सब रिश्तों की खाद है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, एक माँ ने तय किया कि रोज 20 मिनट मोबाइल दूर रखकर सिर्फ बच्चों से बात करेंगी। कुछ ही दिनों में बच्चों का व्यवहार, पढ़ाई और खुशी सब बदल गया। तीसरा, अपेक्षाओं की समीक्षा होनी चाहिए। कई बार हम अपेक्षाओं का बोझ रिश्तों पर डाल देते हैं, जैसे तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं समझते। फैमिली ऑडिट में ये देखना जरूरी है कि क्या हमारी अपेक्षाएं वाजिब है। कम अपेक्षा, ज्यादा स्वीकार, यही रिश्तों की सबसे बड़ी उपचार है। चौथा, शिकायत नहीं समाधान। घर में शिकायतों की लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन फैमिली ऑडिट सिखाता है शिकायत नहीं समाधान खोजिए। जैसे, तुम समय नहीं देते कहने के बजाय चलो रोज थोड़ा साथ बैठते हैं कहना। सटीक उदाहरण कुछ इस तरह दिया जा सकता है, सीमा दी को लगता था कि घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चों की चिड़चिड़ाहट और पति की चुप्पी कुछ और ही कहानी कह रही थी। उन्होंने एक रविवार सबको बैठाया, प्यार से पूछा, क्या हम सब खुश हैं? वहीं से शुरू हुआ फैमिली ऑडिट। धीरे धीरे संवाद बढ़ा, समय तय हुआ और आज उनका घर वाकई प्यार का घर बन गया। दादी की सीख ने बदल दिया सब कुछ। एक दादी कहा करती थी, बेटा, रिश्तों में झाड़ू रोज लगानी पड़ती है, वरना धूल अपने आप जम जाती है। फैमिली ऑडिट वही झाड़ू है जो मन की धूल साफ करता है। रिश्तों की देखभाल का सूत्र है, हर दिन एक धन्यवाद, हर हफ्ते एक साथ बिताना, हर महीने एक खुली बातचीत और हर गलती पर एक माफी। यही तो है रिश्तों की बुनियाद। उदाहरण, एपोलॉजी हिल्स फास्टर देन आर्गुमेंट। घर को चाहिए वक्त की धूप, प्यार की थोड़ी बारिश, नाराजगी की घास हटे तो खिल उठे हर रिश्ता फूल सा। स्ट्रॉन्ग फैमिलीज आर बिल्ट ऑन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। जहाँ समझ है वहाँ शिकायतें कम होती है। रिश्तों की देखभाल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बहनों, फैमिली ऑडिट कोई एक दिन का काम नहीं, ये प्यार की आदत है। अगर हम समय रहते रिश्तों की जाँच करते रहे तो हमारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि सुकून और प्यार का घर बन जाएगा। फैमिली ऑडिट करने से परिवार में छुपी हुई समस्याएं सामने आती है, जिन पर पहले कभी खुलकर बातें नहीं होती थी। कई बार नाराजगी, गलतफहमियां और अपेक्षाएं मन में दब जाती है, जो समय के साथ रिश्तों को कमजोर कर देती है। जब परिवार के सदस्य खुलकर संवाद करते हैं तो दिल का बोझ हल्का होता है और रिश्तों में नई ताजगी आती है। अंत में बस यही कहूंगी, रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि समय ही उन्हें जीवन देता है। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी रिश्तों को चाहिए देखभाल, फैमिली ऑडिट से बनेगा प्यार का घर विषय पर वार्ता। वार्ताकार थी सुमन गुप्ता। बहनों, जिंदगी में रिश्ते कितने जरूरी है ना। कुछ रिश्ते हमारे जन्म से बनते हैं और कुछ रिश्तों को हम बनाते हैं, पर उन रिश्तों को सजाना संवारना हमारी जिम्मेदारी है। और जब रिश्ते में प्यार हो तो उसे कोई नहीं बांट सकता। हम फिल्म का ये खूबसूरत गीत आइए सुनते हैं, सुरेश वाडकर, अलका याज्ञिक, उदित नारायण और सोनाली वाजपेयी की आवाज़ में।

और इस खूबसूरत गीत के बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उम्मीद के साथ अगर कौशल हमारे हाथ हो, डिग्री हो और साथ में हम कुशल भी हों, तो बेशक हमारी जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहते। 15 जुलाई का दिन विश्व युवा कौशल दिवस है। अपने कौशल को, अपने हुनर को अगर हम तराशें, सवारें, सजाएं, तो हमारा देश भारत आत्मनिर्भर जरूर बनेगा। इसलिए तो कहते हैं बहनों, हाथ में रहे कौशल तो भारत बनेगा आत्मनिर्भर। जब एक देश के युवाओं के हाथों में केवल डिग्री नहीं बल्कि हुनर होता है, तो वो देश किसी और पर निर्भर नहीं रहता। और 15 जुलाई का दिन दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत जैसे विशाल और युवा आबादी वाले देश के लिए ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करने का संकल्प है। पूरी दुनिया इस दिवस को मना रही है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। और बात जब कौशल की हो, हुनर की हो, तो हमारे जहन में एक ही बात उठती है, हाथ में रहे कौशल तो भारत बनेगा आत्मनिर्भर। बहनों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, डिग्रियां तो सिर्फ आपकी पढ़ाई का

0: खर्च बताती है, लेकिन आपका हुनर ही समाज में आपकी असली कीमत तय करता है। आज हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे पास करोड़ों युवाओं की ऊर्जा है, सपने हैं और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। लेकिन इन सपनों को हकीकत के पंख तब मिलते हैं जब हमारे युवाओं के हाथों में कोई ना कोई हुनर होता है। पुराने समय में अक्सर सुनते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आज का नया भारत कहता है पढ़ने लिखने के साथ जब सीखोगे हुनर तभी तरक्की की राह होगी और आसान। बहनों, आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना ही नहीं है। आत्मनिर्भरता की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से, एक घर से। जब हमारे देश का एक युवा मोबाइल रिपेयरिंग सीखता है, कोई बेटी सिलाई कढ़ाई या ब्यूटी वेलनेस का कोर्स करके अपना स्टार्टअप शुरू करती है, या फिर कोई नौजवान आधुनिक खेती, कोडिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग में महारत हासिल करता है, तो वो सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता बल्कि वह नए भारत की आत्मनिर्भरता की नींव रख रहा होता है। विशेष रूप से अगर हम अपनी बहनों और महिलाओं की बात करें, चाहे वे घर संभालती हों या बाहर काम करती हों, जब उनके हाथों में कोई हुनर आ जाता है तो पूरे परिवार की किस्मत बदल जाती है। हुनर किसी दफ्तर की कुर्सी या डिग्री का मोहताज नहीं होता, ये तो वो चाबी है बहनों जो रोजगार और सम्मान के बंद दरवाजे खोल देती है। आज सरकार की स्किल इंडिया जैसी योजनाएं देश के कोने कोने में, गांवों कस्बों में युवाओं को मुफ्त और किफायती तकनीकी शिक्षा दे रही है। जरूरत है तो बस इस बात की कि हम आगे बढ़ें, अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानें और उसे एक सही दिशा दें। हमें अपनी नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि अपने हुनर के दम पर नौकरी देने वाला बनना है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज के इस बेहद खास दिन पर खुद से एक वादा कीजिए, कोई एक हुनर, कोई एक स्किल ऐसी जरूर सीखिए जो आपको भीड़ से अलग बनाए, चाहे वो कोई कला हो, कोई तकनीकी ज्ञान हो या फिर डिजिटल स्किल हो। क्योंकि जब आपके हाथों में हुनर की ताकत होगी तभी हमारा देश अपनी पूरी क्षमता से मुस्कुराएगा। और बहनों, आप में से कई सारी ऐसी बहनें हैं जिनके पास हुनर तो पहले से ही है लेकिन वो अपने हुनर को बाहर निकालने से हिचकती हैं, डरती हैं। तो डरने का वक्त अब गया, चाहे उम्र कोई भी हो, लेकिन आपका हुनर कभी पुराना नहीं होता। अपनी अगली पीढ़ी को भी तो दीजिए, इसलिए अपने हुनर को दिखाइए, बुटीक खोलिए या फिर छोटे ही स्तर पर अपने काम को शुरू करिए। क्योंकि हमारे देश की अधिकतर महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई बहुत अच्छी आती है और हाँ, पेंटिंग वगैरह भी बहुत सी बहनें बहुत अच्छा जानती हैं। तो आप अपने हुनर को छुपा कर क्यों रख रही हैं, उसे बाहर निकालिए। आज के दिन बस मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगी कि खुद को करके बुलंद इतना हर मुश्किल को आसा कर दे, खुद को करके बुलंद इतना हर मुश्किल को आसा कर दे, अपने हाथों के हुनर से दोस्त इस तिरंगे का मान और बढ़ा दे। आप सभी बहनों को हम यही कहना चाहेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल अपने हुनर को आगे बढ़ाइए। बहनों, और याद दिला दूं आपको कि इस वक्त हमारे पूरे देश में SIR सर्वेक्षण चल रहा है। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। ये मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा अब तक का सबसे बड़ा घर घर जाकर किया जाने वाला सत्यापन अभियान है। इसलिए बहनों, आप SIR फॉर्म जो आपकी BLO ने आपको दिया है उसे अच्छी तरह से भरकर उन्हें सौंप दें, क्योंकि SIR का उद्देश्य ही है मतदाता सूची से ऐसे लोगों के नाम हटाना जो अब उस पते पर नहीं रहते या जिनका नाम दो जगह दर्ज है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जो युवा हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं या जो योग्य नागरिक किसी कारणवश छूट गए थे, उनका नाम जोड़ना और नाम, पते या फोटो में मौजूद गलतियों को ठीक करना, ताकि आने वाले चुनावों में किसी भी मतदाता को परेशानी ना हो और आप वोट कर सकें। और फिलहाल वक्त का ये इशारा है कि हमें आपसे लेनी होगी विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपनी दोस्त और बहन जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। 1:10 से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। खतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत विभिन्न नदियों और नहरों में 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का लिया निर्णय। ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ के प्रशासनिक आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। साइबर अपराध के पीड़ित आम लोगों और व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने शुरू किया जीआरएम पोर्टल। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का लिया निर्णय। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होने के दिए संकेत। राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत राज्य के 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ऊर्जा विभाग विभिन्न जिलों में स्मॉल मिनी और माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने की योजना तैयार कर रहा है। ये प्रोजेक्ट रांची, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम जिलों के नदियों और नहरों के लिए किनारे लगाए जाएंगे। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। रांची में अपने निजी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने राजनीतिक जीवन का लंबा सफर तय किया है, ऐसे में राजनीति में भी पड़ाव जरूर आना चाहिए, आपको स्वतः अवकाश ले लेना चाहिए। वित्त मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की राजनीति का उन्हें कोई लालसा नहीं है। उन्होंने धर्म कर्म, सामाजिक उत्थान, लेखन कार्य और देशाटन करने की इच्छा जताई है।
1: राजनीति में एक पड़ाव आना चाहिए कि आपको स्वतः अवकाश ले लेना चाहिए राजनीति से। तो 2029 में जब चुनाव होगा तो राजनीतिक उम्र हमारी 50 वर्ष की हो जाएगी। तो मेरे मन की इच्छा यही है जो मैं साफ साफ आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो 2029 के चुनाव में मैंने अभी तक मन बनाया है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद के एक मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमीन के अतिक्रमण और उसकी पहचान से जुड़े विवादित सवालों का फैसला रिट याचिका के माध्यम से नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में साक्ष्यों की आवश्यकता होती है जिनका निपटारा दीवानी अदालत ही कर सकती है। प्रदेश भाजपा ने किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविनाथ किशोर ने आरोप लगाया कि कृषि क्षेत्र से जुड़े कई सरकारी दावे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की मांग की।
2: और राज्य सरकारों के किसानों के हित से कोई मतलब नहीं है। उनको समय पर खाद बीज भी नहीं मिल रहा है, सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल रही है, धानों का जो मूल्य होना मिलना चाहिए वो भी उनको समय पर नहीं मिल रहा है, और ऋण माफी की जो बात किसानों के लिए उन्होंने की थी पिछले बार वो भी सब छलावा साबित हुआ है। तो यह सरकार जो चल रही है पूर्णतः किसान विरोधी है और किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 350 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5 लाख रुपए का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी सीधे सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को ऋण नहीं देती। साइबर अपराधों की जांच के दौरान फ्रीज या होल्ड किए गए बैंक खातों की समस्याओं से आम जनता और अब व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जीआरएम पोर्टल शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावित निर्दोष खाता धारकों को पारदर्शी, ऑनलाइन और समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने विशेष रेल परिचालन करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने रथ यात्रा 2026 के दौरान पूरी आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए चक्रधरपुर मंडल से होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष ट्रेनों के चलने से झारखंड, ओडिशा तथा आसपास के क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मेदिनीनगर सदर और पाकी थाना क्षेत्र में 5 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 1 किलोग्राम अफीम, 50 किलो डोडा, 15,450 रुपए नकद, कार, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।
3: ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत एनडीपीएस के अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। सदर थाना अंतर्गत जो अभियुक्त थे उनके पास से लगभग 750 ग्राम अफीम जब्त हुआ। बाकी थाना क्षेत्र में जांच करने के क्रम में 50 किलोग्राम डोडा की रिकवरी हुई और उसके साथ साथ लगभग 250 ग्राम अफीम भी जब्त, जो इस तस्करी में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। दुमका जिले में वर्षा का पैटर्न बदल गया है, जिससे खरीफ की खेती का जोखिम बढ़ गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के दुमका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुमार शैलेंद्र मोहन ने बताया है कि पिछले 35 सालों में दुमका जिले में वर्षा की कुल मात्रा में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन वर्षा के समय और वितरण में बदलाव आया है। इससे खरीफ के मौसम में पानी की कमी हो रही है। उधर जामताड़ा जिले में अब तक अपेक्षाकृत कम बारिश होने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने बताया कि कम बारिश को देखते हुए मोटे अनाजों की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है।
4: जिले में 50% से कम बारिश हुई है, बाकी जगहों पे अभी रोपा नहीं हो पा रही। इसी को देखते हुए जिला में कंटीजेंट प्लांट के तहत अरहर का और मूंग का वितरण बीज का किया जा रहा है 100% सब्सिडी में और लेंस पैक्स के द्वारा 50% सीड एक्सचेंज, और अभी मिलेट मिशन का प्रचार प्रसार जोरों से किया जा रहा है। उसके द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपया करके मिलता है, किसान 5 एकड़ तक 15,000 रुपया ले सकते हैं।
0: मौसम विभाग ने देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग के अनुसार 14 जुलाई से राज्य के अधिकांश भागों में भारी बारिश के संकेत हैं, जिससे राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद है। रांची में आयोजित नगड़ी प्रीमियर लीग मुकाबले में कल रॉयल्स की टीम ने टाइटंस को 43 रनों से हरा दिया। रॉयल्स ने 20 ओवरों में 128 रन बनाए, जबकि टाइटंस की पूरी टीम 19 ओवर और 4 गेंद पर 85 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के तहत विभिन्न नदियों और नहरों में 16 जगहों पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाने का लिया निर्णय। ऊर्जा विभाग ने तैयारी शुरू की। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद मामले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ के प्रशासनिक आदेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। साइबर अपराध के पीड़ित आम लोगों और व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए झारखंड पुलिस ने शुरू किया GRM पोर्टल। पूरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल से होकर 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन का लिया निर्णय। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में अच्छी बारिश होने के दिए संकेत। राज्य में अब तक कम बारिश की भरपाई होने की उम्मीद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी रांची से अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
4: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
3: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
5: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
0: प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आगाज करते हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म के गीत के साथ। आइए सुनते हैं सचिन जिगर के धुन पर शिल्पा राव और सचेत टंडन के स्वर में। शब्द रचना है प्रिया सरैया का।

सुनिधि चौहान और वाजिद खान की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे नाम फिल्म से। गीतकार थे जलीस शेरवानी, संगीतकार साजिद वाजिद। अगला गीत आइए सुनते हैं शिकारा फिल्म का। इसे गाया है पापोन और श्रद्धा मिश्रा ने। संदेश शांडिली की धुन है, शब्द रचना है इरशाद कामिल की। तो आइए सुनते हैं शिकारा फिल्म का ये नगमा।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी जमशेदपुर से। आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म से। ज्योति नूरान की आवाज है, अमित त्रिवेदी के धुन पर। लीजिए सुनिए कौसर मुनीर के बोल।

आइए सुनते हैं अगला गीत शुद्ध देसी रोमांस फिल्म का। आवाजें हैं जिगर सरैया और प्रिया सरैया की, सचिन जिगर के धुन हैं, बोल हैं जयदीप साहनी के। तो आइए सुनते हैं जिगर सरैया और प्रिया सरैया की आवाज में ये गीत।

0: जलवायु परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित करता है। यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह ताजा पानी कम करता है, भोजन की सप्लाई में रुकावट डालता है और वायु की क्वालिटी को खराब करता है। इसका असर खासकर गरीब लोगों पर पड़ता है। यह जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाता है और लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल देता है। गर्मी की लहर, बाढ़ और सूखा जैसे मौसम अब बार बार हो रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन तटवर्ती और बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन का बढ़ावा दे सकता है। कुछ क्षेत्रों को थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन अधिकतर को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक चौंकाने वाली बात है। करीब 10 लाख पौधे और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के किनारे पर हैं, और कई तो अगले कुछ दशकों में ही गायब हो सकती हैं।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

गीत और संगीत आदित्य रेखारी का था, आवाजी थी आदित्य रेखारी और तुलसी कुमार की, फिल्म थी भूल भुलैया 3। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं रेड 2 फिल्म से। जुबिन नौटियाल की आवाज है, मनोज मुंतशिर ने इसे रचा है। आइए सुनते हैं रोचक कोहली के धुन पर।

0: inducted into AMTS and BRTS fleets, making the Ahmedabad BRTS the first in the country to operate 100% electric and zero pollution fleet. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
1: Union Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Mr. Chauhan said today the entire world is concerned about climate change and global warming. He noted that since 1880, rising ocean temperatures and melting glaciers have led to an increase in global sea levels by about 20 to 23 centimeters. He added that the Earth's average temperature has risen by nearly 1.5 degrees Celsius compared to 1900, which is a serious warning sign of climate change. The Employees Provident Fund organizations had introduced the Amnesty Scheme 2026, providing a one-time opportunity for establishments operating exempted provident fund to regularize their status. Labor and Employment Ministry said that the scheme will remain open for a period of 6 months. This scheme applies to establishments that have been operating a provident fund trust recognized under the Income Tax Act 1961. The ministry said eligible establishments shall submit a formal application through email to the concerned regional office. An exempted provident fund is an employer-managed PF scheme that handles its own provident fund contributions internally through a private trust rather than depositing them directly into the employees' provident fund organization. We have a report.
2: The EPFO's introduced amnesty scheme provides a one-time opportunity for eligible establishments that have been operating recognized PF trusts to regularize their status retrospectively. It is intended to bring such trusts within a uniform statutory framework while ensuring compliance with the applicable legal provisions. For employees, the scheme is expected to provide a greater certainty regarding the legal status of the employer's provident fund trust. It also requires that member accounts should have received contributions and interest at par with or better than the statutory EPFO rates for the prescribed relief to apply. By regularizing exempted PF trusts, the scheme is also expected to make the administration of provident fund benefits more streamlined and legally compliant. With Devendra Kumar, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
1: In tennis, two Wimbledon titles will be decided today as the men's singles and women's doubles finals are played. World number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev in the men's singles final at 8:30 p.m. Indian Standard Time. Sinner booked his place in the title clash with a straight sets victory over Novak Djokovic, while Zverev entered his first Wimbledon final after defeating British wildcard Arthur Fairey. The women's doubles final will begin at 5:30 p.m. IST. In the FIFA World Cup, England booked their semi-final berth with a 2-1 extra time win over Norway, while Argentina entered the semi-final, defeating Switzerland 3-1 this morning. In the first semi-final, France and Spain will face off on Wednesday. The match will kick off at 12:30 a.m. Indian Standard Time. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarter-finals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. The second semi-final will be played on Thursday between England and Argentina at 12:30 a.m. Indian time. The winners of the two semi-finals will meet in the FIFA World Cup final on July the 20th at New York, New Jersey Stadium. The losing teams will play the third place playoff on July the 19th in Miami. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. It has predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Gangetic, West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating Private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Yannick Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को

0: यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई

0: इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद बीआरटीएस देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
2: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की रेबिएला ट्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और

न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

डीडे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मीका सिंह, गौरव गुप्ता और मणि महादेवन की आवाज में शंकर एहसान लॉय ने धुन सजाई थी। इस गीत को लिखा था निरंजन आयंगर ने। अगला गीत आइए सुनते हैं ये दिल लगे फिल्म का। आवाज है अभिजीत भट्टाचार्य की, दिलीप सेन समीर सेन के धुन है। लीजिए सुनिए समीर की रचना।

ये दिल लगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में समीर की रचना थी, दिलीप सेन समीर सेन के धुन पर आप सुन रहे थे ये गीत।

ये थी देवनेगी नेहा कक्कड़, मोनाली ठाकुर और इक्का बद्री की दुल्हनिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थी शब्बीर अहमद, संगीतकार तनिष्क बागची।

दिल धड़कने दो फिल्म का ये गीत था। आप सुन रहे थे यशोदा शर्मा, मनीष कुमार टीपू, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह की आवाज में। गीतकार थी जावेद अख्तर, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉयनी। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर खत्म हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:55 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। श्री चौहान ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ओटीसी मैदान से पंडरा फ्रेंड्स कॉलोनी तक बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स प्रतिदिन अपनी दुकान लगाकर आजीविका अर्जित करते हैं, लेकिन उन्हें वर्षों से स्थायी स्थान के अभाव सहित कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री के साथ रांची की मेयर रोशनी खलको भी मौजूद थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो 95 ग्राम बेशकीमती पन्ना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडेलवाल ने बताया कि बरामद पन्ना की अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए के आसपास है।
1: पन्ना की अवैध तस्करी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, कुल 1 kg 95 ग्राम पन्ना के साथ और 2 मोटरसाइकिल और इनके 3 फोन और कुल 2300 रुपए नकद के साथ इनको गिरफ्तार किया गया।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 350 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5,00,000 रुपये का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी स्वीकृति पत्र का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस पत्र को पूरी तरह फर्जी बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा सीधे सूक्ष्म उद्यमियों या व्यक्तियों को ऋण नहीं देती। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित घाघरा गांव से उत्पाद विभाग ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 350 पेटी नकली विदेशी शराब, हजारों नकली लेबल और भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया है। उत्पाद अधीक्षक शिव कुमार साहू ने बताया कि यहां अंग्रेजी शराब के कई ब्रांड के नाम पर नकली शराब तैयार की जा रही थी।
2: टीम के द्वारा विधिवत रूप से जब परिसर की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण, कैरामेल, स्पिरिट, ढक्कन, रेपर, विभिन्न ब्रांड का ड्रम जब्त किया गया। 35 लीटर स्पिरिट जब्त किए, तो कुल मिला के लगभग 350 पेटी निर्मित विदेशी शराब, लगभग 4,000 लीटर स्पिरिट, भारी मात्रा में नकली होलोग्राम, खाली बोतल 60 बोरा, कार्टून 1,000 पीस, नकली ढक्कन 25,000 पीस जब्त किए।
0: पूर्वी सिंहभूम जिले के उलीडीह थाना क्षेत्र स्थित राजस्थान भवन के समीप चोरों ने लगातार 2 रातों में करीब 10 दुकानों से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर इन दुकानों के ताले तोड़कर नकदी, कीमती सामान और अन्य सामग्री लेकर फरार हो गए, जबकि कुछ दुकानों में ताले तोड़े जाने के बावजूद चोरी नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि चोरों ने अधिकतर किराना, मेडिकल, हार्डवेयर और अन्य प्रतिष्ठानों को अपना निशाना बनाया। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। रांची के मोरहाबादी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्र मैराथन का आयोजन किया गया। बापू वाटिका से शुरू हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने प्रोविजनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। कुल रिक्तियां हैं 6,715। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 20 और अधिकतम 30 वर्ष है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में सरकारी नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का होगा। यह ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी जिसमें अंग्रेजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल होंगे। दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन शुल्क ₹850 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए ₹175 हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं www.ibps.in।

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए रिक्तियां हैं 323 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए रिक्तियां हैं 6234। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन में बीएससी या संबंधित स्ट्रीम में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीए बीटेक करने वाले आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट या कोर्स कंप्लीटेड एक्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आयु 18 से 33 वर्ष है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में सरकारी नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क ₹500 है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹250 है। अधिक जानकारी के लिए आप सर्च करें https://www.rrb.tiruvananthapuram.gov.in। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आकाशवाणी जमशेदपुर से रोजगार समाचार समाप्त हुए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के दिवाकालीन प्रसारण। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत भजन। कलाकार हैं आनंदिता गुप्ता।

0: अनिंदिता गुप्ता के स्वर में ये भजन आप सुन रहे थे। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर। आइए सुनते हैं झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं रोहिण चंद्र महतो।
1: कार्यक्रम आदिवासी लोकगीत में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुरमाली लोकगीत से। कलाकार हैं रोहिण चंद्र महतो और साथी।

कार्यक्रम आदिवासी लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे कलाकार रोहिन चंद महतो और साथियों की आवाज में कुरमाली लोकगीत। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

कुरमाली लोकगीत कलाकार थी रोहिण चंद्र महतो एवं साथी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के दिवाकालीन प्रसारण। 3:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राग दादरा में ठुमरी। कलाकार हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान।

उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राग दादरा में ठुमरी। आइए अब सुनते हैं भजन। कलाकार हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान।

0: उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भजन, कलाकार थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं दामोदर प्रसाद सिंह।
1: कार्यक्रम लोकगीत में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रवीण सेठी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भोजपुरी लोकगीत से। कलाकार हैं दामोदर प्रसाद सिंह और साथी।

पचनिया बबुआ बोलना सुधरा मलिनिया पूछे मधुरी बचनिया बबुआ बोलना काहे खातिर।

कलाकार दामोदर प्रसाद सिंह और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे हैं भोजपुरी लोकगीत।

0: कार्यक्रम लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे कलाकार दामोदर प्रसाद सिंह और साथियों की आवाज में भोजपुरी लोकगीत। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का उल्लेख किया। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद

संजय सेठ ने आज पंडरा थाना के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। यह योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो 95 ग्राम बेशकीमती पन्ना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडेलवाल ने बताया कि बरामद पन्ना की अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए के आसपास है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित घाघरा गांव से उत्पाद विभाग ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 350 पेटी नकली विदेशी शराब, हजारों नकली लेबल और भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया है। रांची के मुरहबादी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्र मैराथन का आयोजन किया गया। बापू वाटिका से शुरू हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सामुदायिक गीत पाठ।
1: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा, सीखोगे ना?
2: हाँ।
1: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है?
2: श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही।
1: श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
3: क्यों नाम धरी,
2: क्यों नाम धरी,
3: डाकी भी तुमको,
2: डाकी भी तुमको,
3: तुमे जे सर्वनाम,
2: तुमे जे सर्वनाम,
3: केऊ नाम धरी,
2: केऊ नाम धरी,
3: डाकी भी तुमको,
2: डाकी भी तुमको,
3: तुमे जे सर्वनाम,
2: तुमे जे सर्वनाम।
1: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतर लिख लो।
3: आलोक तुमको,
2: आलोक तुमको,
3: नपारे देखाई,
2: नपारे देखाई,
3: तुमे जे देखाओ ताहारे,
2: तुमे जे देखाओ ताहारे,
3: आलोक तुमको,
2: आलोक तुमको,
3: नपारे देखाई,
2: नपारे देखाई,
3: तुमे जे देखाओ ताहारे,
2: तुमे जे देखाओ ताहारे,
3: तुमे जे बेढ़ीच, कोटि विश्वर,
2: कोटि विश्वर,
3: सबुरी भितरे बाहरे,
2: सबुरी भितरे बाहरे,
3: तुमे जे बेढ़ीच,
2: तुमे जे बेढ़ीच,
3: कोटि विश्वर,
2: कोटि विश्वर,
3: सबुरी भितरे बाहरे,
2: सबुरी भितरे बाहरे।
1: ये हुआ पहला अंतर। अब दूसरा अंतर।
3: लुहा होई तुमे,
2: लुहा होई तुमे,
3: झरी पड़ा परा,
2: झरी पड़ा परा,
3: केते नयनर कोणरु,
2: केते नयनर कोणरु,
3: लुहा होई तुमे,
2: लुहा होई तुमे,
3: झरी पड़ा परा,
2: झरी पड़ा परा,
3: केते नयनर कोणरु,
2: केते नयनर कोणरु,
3: हस होई पुन।

0: फुला परी फुट
1: फुला परी फुट
0: केते जे नरम अधरु
1: केते जे नरम अधरु
0: हस
1: होई पुणी
0: फुला परी फुट
1: फुला परी फुट
0: केते जे नरम अधरु
1: केते जे नरम अधरु
0: केऊ
1: नाम धरी
0: डाकीबी
1: तुमकु
2: अब हम गाना सीखेंगे। ये गाना खिमटा ताल में है। इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो। इसमें एक ताली और एक खाली है।

0: अब हम गाना सीखेंगे।
1: One, two, three, four.

0: हमने गाना सीख लिया, इसे अब तुम सब मिलकर गाओ देखें।
1: 1 2 3 4

0: तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रही थी सामुदायिक गीत पाठ के तहत उड़िया लेसन।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:30 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: श्रोताओं, 25 मार्च 2000

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
0: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: संदेश के बाद हम हाजिर हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजकर

साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज़ों में दीवाना फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

फिल्म जब वी मेट से लिए इस गाने में अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की मधुर आवाज को। शब्द रचना थी इरशाद कामिल की और संगीत दिया था प्रीतम ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म का ये गाना। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत दिया था राहुल देव बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे लावा फिल्म से लिए इस गाने में। इस गाने के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और इसकी धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत की प्रस्तुति से मुझे यानी विभा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से समाचार मुख्यांश। कृपया प्रतीक्षा करें।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज पंडरा थाना क्षेत्र के सामने स्थित खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। श्री सेठ ने बताया कि इस स्थान को विकसित कर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सम्मानजनक और स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रशासनिक भवन परिसर में हरित विधिका के तहत पौधारोपण के साथ हुआ। कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों ने पौधारोपण किया। पाकुड़ जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मतदाता केंद्रों पर डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए। कैंपों में गणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रह और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। खूंटी जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एक हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक देसी पिस्तल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने करीब 1 किलो 95 ग्राम बेशकीमती पन्ना बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शुभम खंडे

0: अग्रवाल ने बताया कि बरामद पन्ना की अनुमानित कीमत करीब 1,50,00,000 रुपए के आसपास है। रांची के मुराहबादी में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्र मैराथन का आयोजन किया गया। बापू वाटिका से शुरू हुए इस मैराथन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। मैराथन के समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी रांची से अभी आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, चूंकि आज दिन रविवार है, इसलिए आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित अंग्रेजी कार्यक्रम यूथ टाइम्स।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित अंग्रेजी कार्यक्रम यूथ टाइम्स। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुआ चाहते हैं। अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं विराम और सुनते हैं ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस संदेश के बाद हम हाजिर हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं श्रमिक श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने।

श्रोता साथी कहते हैं, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। बस इसे ही उम्मीद कहते हैं। इसी ताकत से इंसान

सफल होता है हो सकता है, इसलिए उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी में हर किसी के सामने चुनौतियाँ आती ही हैं, कभी परीक्षा का दबाव, कभी नौकरी की चिंता, कभी आर्थिक परेशानियाँ, तो कभी रिश्तों की उलझने। इसे ही जिंदगी का अलग अलग स्वरूप कहते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन इन चुनौतियों में भी जो इंसान उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता, वही हर मुश्किल को अवसर में बदल लेता है। उम्मीद केवल एक भावना नहीं बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा है। जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, हम हताश निराश हो जाते हैं, तभी एक नई करण, एक नई दिशा, एक नया रास्ता हमें दिखाई देता है, हमारा इंतजार करता होता है। श्रोता साथी, याद रखिए, हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। हर असफलता हमें कुछ न कुछ नया जरूर सिखाती है और सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ाती है। श्रोताओं, यदि हमारा मन असफलता से निराश हो रहा है अथक परिश्रमों के बावजूद, तो जरूरत है प्रेरणा लेने की। कोई निराश दिख रहा हो तो जरूरत है उससे बतियाने की। कई बार एक प्यारी मुस्कान, एक सच्चा साथ जिंदगी में नई उम्मीद जगा देता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खुद का हौसला बुलंद रखिए, औरों का हौसला बढ़ाते रहिए। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।

0: आप सुन रहे थे लाइफ इन मेट्रो फिल्म का गीत, सोहम चक्रवर्ती की आवाज में, शब्द रचना सईद कादरी के थे और संगीत निर्देशन प्रीतम का था। बढ़ते हैं श्रोताओं कार्यक्रम में आगे, लेते हैं जानकारी वार्ता के जरिए कर्मचारियों की प्रगति में कौशल विकास के फायदे। वार्ताकार हैं पशुपतिनाथ साह।
1: कौशल विकास भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक रोजगार परक क्रांतिकारी अभियान है। इसमें सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन के माध्यम से संगठित रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। कौशल विकास होने से स्वरोजगार एवं रोजगार दोनों की प्राप्ति होती है। आप देखेंगे कि कल कारखानों में जब रोजगार नहीं होती है तो आदमी सोचता है कि मैं किसी भी तरीके से उसमें प्रवेश कर जाऊं, लेकिन जैसे ही वो कौशल प्राप्त करता है तो उसे कुशल श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाता है और उससे ज्यादा भुगतान मिलता है। इस तरह से आप देखेंगे कि कौशल विकास कर्मचारियों के हित में सदैव एक बहुत ही वरदान रहा है और इस कार्य के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों की सहभागिता के आधार पर एक योजना बनाई जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स, यानी कि SDIS रखा गया। यह योजना रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, अंग्रेजी में इसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग बोलते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में प्रारंभ की गई, जिसमें निजी क्षेत्र एवं अन्य सरकारी संगठन तथा विभाग मदद कर रहे हैं। कर्मचारियों को इस योजना से लाभ लेने के लिए भारत सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया जिसमें बहुत सारे जानकार लोगों को शामिल किया गया, जिसका नाम रखा गया VTP, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स। VTP के माध्यम से पूरे देश में ये प्रयास किया गया कि हर राज्य में, हर जिले में कम से कम ऐसे संस्थान खुल जाएं जिससे लोग आसानी से स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, कौशल विकास से संबंधित कार्य कर सकें। ये तकरीबन 1500 ट्रेडों में प्रशिक्षण दे रहे हैं जो 15 दिन से लेकर 2 वर्ष तक होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो प्रशिक्षण होता है यह निशुल्क होता है, यानी कि कोई भी कर्मचारी किसी भी VTP के यहाँ जाकर अपना निबंधन करा सकता है और निबंधन कराने के बाद में वह सारे प्रशिक्षण, यानी कि जिस क्षेत्र को वो चुनता है उसमें उसे निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त होगी, कोई पैसा नहीं देना है। और इसमें निबंधन लेने वाले कर्मचारियों की आयु सीमा सरकार ने कुछ में 14 वर्ष से प्रारंभ किया है, कुछ में 18 वर्ष से और कुछ में 21 वर्ष से, और पढ़ाई बिल्कुल 8वीं पास से भी व्यक्ति अपनी तैयारी कर सकता है और कौशल विकास करके कहीं पर रोजगार पा सकता है। खास तौर पर महिलाओं को वरीयता दी

जाती है। कामकाजी अध्ययन की अपेक्षा रखा जाता है तथा इसके कौशल और विकास का अनुभव को बेहतर करने के लिए उसको सलाह दी जाती है और एक टेस्ट के माध्यम से उनको ये बताया जाता है कि आप किस ट्रेड के लिए उपयुक्त हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि इसका इतना शानदार परिणाम रहा है कि फुटपाथ पर टायर का पंचर बनाने से लेके मोटरसाइकिल मैकेनिक से लेके दर्जी का काम करने वाला, ब्यूटिशियन का काम करने वाला या कारखानों में छोटे छोटे रोजी रोजगार ठेका श्रमिकों के रूप में काम करने वाले ये सभी लोग कौशल प्राप्त कर और कामयाबी हासिल किए हैं। पूरे VTP जितने हैं देश में उनके माध्यम से ये देखा गया है कि तकरीबन 400 छोटे छोटे ट्रेड हैं। इनमें मुख्य रूप से आप देखिए अकाउंटिंग है, ब्यूटिशियन है, वाहन रिपेयरिंग है, बैंकिंग और अकाउंटिंग का एक अलग से क्लास होता है, ब्यूटिशियन है, कारपेट बनाने का है, सिलाई बुनाई सीखने का है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का है, फ्रिज और AC बनाना सिखाया जाता है, फैब्रिकेशन के कार्य बताए जाते हैं, फैशन डिजाइनिंग सिखाई जाती है, गहने बनाना, आर्टिफिशियल गहने बनाना महिलाओं और लड़कियों को सिखाया जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर बनाए जाते हैं, अस्पतालों में सेवा का काम करना सिखाया जाता है, खादी ग्राम उद्योग को बुनाई करके और सामान पहुंचाने की जो कला है वो सिखाई जाती है, यहाँ तक कि मेहमान नवाजी और हाउसकीपिंग जिसकी आज बहुत मांग है वो भी सिखाया जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि अस्पतालों में जो मिडवाइफ हैं या वार्ड बॉय होते हैं, बेड साइड जो अटेंडेंट होते हैं उनको भी कौशल विकास किया जाता है। उसके बाद में आज प्रिंटिंग प्रेस में ही अकेले 10 प्रकार के कैरियर के बारे में बताया जाता है। भवन निर्माण तकनीक, सुरक्षा प्रहरी, आपको आश्चर्य होगा कि सुरक्षा प्रहरी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बेरोजगार है, सभी लोगों को इस कौशल विकास के बाद तुरंत कार्य मिल जाता है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में कार्य करना सिखाया जाता है, खाद कैसे बनाते हैं, जमीन की जांच कैसे की जाती है, खाद बनाने के क्रम में उसकी मात्रा कितनी तय होगी और आप उसको दूसरे शब्दों में कृषि मित्र कह सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति कौशल विकास करता है, महिला हो या पुरुष हो, वो कृषि श्रमिक का नेता बन जाता है और किसान क्लबों में मार्गदर्शन देता है। इसी तरीके से एक और रोजगार है कूरियर, जो आज बहुत पॉपुलर है। कूरियर में भी जब आप कौशल विकास कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं, आप ब्लू डार्ट, फर्स्ट फ्लाइट, इनमें आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि जमशेदपुर और आदित्यपुर और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम के मुख्य जगहों पर क्या VTP उपलब्ध हैं, आप कौशल विकास के लिए कहां प्रशिक्षण लेते हैं। तो इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जमशेदपुर में अकेले 20 VTPs हैं जिसमें आप जाकर कौशल विकास करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख है एडवांस टेक्नो मैनेजमेंट, अलाइड सोसाइटी, भारत इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, जील इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कनक इन्फोटेक सिस्टम, नार्दन प्राइवेट ITI लिमिटेड, RNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बाबा प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इत्यादि प्रमुख हैं। इन संगठनों यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप भारत सरकार के डायरेक्टरेट जनरल एंड एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के वेबसाइट में जाकर विस्तृत सूचना ले सकते हैं। अगर कोई असुविधा हो तो स्थानीय नियोजन पदाधिकारी जो कि जमशेदपुर में आपके गोलमुरी और बर्मा माइंस दोनों जगह में बैठते हैं, उनसे जाकर संपर्क करके आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और इस कौशल विकास में सबसे मजेदार और एक शानदार बात है युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, आप जब भी जाएं तो ऐसे ट्रेड को सीखने का प्रयास करें जिससे तुरंत बाजार में आपके लिए कार्य उपलब्ध हो। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि फोटोग्राफी और मोबाइल रिपेयरिंग, ये दोनों काम ऐसे हैं कि इसके लिए आपको बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने घरों में भी इसका छोटा सा उद्योग लगाकर और आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जो कर्मचारी स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास करते हैं
उनके कैरियर में भी प्रोग्रेशन होता है, उन्हें प्रमोशन मिलता है, उनका वेतनमान बढ़ता है और वो दूसरी जगह नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सही मूल्यांकन करने पर ये पता चलता है कि कौशल विकास के अभाव में ही बेरोजगारी है।

0: अतः मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपना तुरंत निबंधन करा के और कौशल विकास हासिल करें, और अगर आप पहले से ही कुशल श्रमिक हैं तो अन्य ट्रेड भी जोड़ें, जिससे आपके जीवन में चतुर्दिक दिशाओं में कामयाबी मिले।
1: आपने सुनी वार्ता, कर्मचारियों की प्रगति में कौशल विकास के फायदे, ये विषय आज की वार्ता का। वार्ताकार थे पशुपतिनाथ साह। हम आपको बता दें श्रोताओं, इस वार्ता का पुनः प्रसारण किया गया। कहते हैं, हुनर हाथों में हो तो साधारण काम भी असाधारण बन जाता है। भारत की मिट्टी में बसे ऐसे लाखों हुनरमंद कारीगरों को सम्मान, पहचान और नई तकनीक और ताकत देने के लिए भारत सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। दोस्तों, हमारे देश के बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्जी, मोची, राजमिस्त्री और कई पारंपरिक कारीगर पीढ़ियों से अपने हुनर से समाज को समृद्ध बनाते आए हैं। ये योजना उनके कौशल को नई पहचान देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औजारों के लिए सहायता, पहचान पत्र और आर्थिक सहयोग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है। साथ ही अपने उत्पादों को बेहतर बाजार तक पहुंचाने में भी सहायता प्रदान की जाती है। वैसे व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं श्रोताओं, जो हाथ और औजारों से काम करने वाले पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े हैं और निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं यदि उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। श्रोता साथी, ये योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि कारीगरों के हुनर को सम्मान देने का प्रयास है, क्योंकि जब हमारे देश के कारीगर मजबूत होंगे तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना और मजबूत होगा। अपने आसपास के लोगों को इस योजना की जानकारी और इसका लाभ उठाने में सहयोग अवश्य करें। हुनर को मिले सम्मान, कारीगर बने आत्मनिर्भर और भारत बने समृद्ध।
2: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

आप सुन रहे थे मुस्कान फिल्म का गीत, शब्द रचना समीर के थे, संगीत निर्देशन निखिल विनय का था, आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। श्रोताओं, इसी के साथ कल कारखाने का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त स्नेहलता को अनुमति। आप सभी को मेरा नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रखा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए।

0: इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मूज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India has condemned the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman today. The External Affairs Ministry informed in a statement that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one Indian national is reportedly missing. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. India has thanked the Omani authorities for their support. New Delhi has expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It reiterated the call for immediate de-escalation of tensions and the conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon the ship. Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, and the United Arab Emirates. Iran's Revolutionary Guard said it has closed the Strait of Hormuz until further notice and warned of further action if U.S. strikes continue. The mortal remains of the 15 Indian nationals who lost their lives in yesterday's boat capsize near Phu Quoc Island in Vietnam are being transported to its Ho Chi Minh City. The Indian Embassy in Vietnam in a social media post today informed that after the completion of necessary formalities there, the mortal remains will be transported to India at the earliest. Earlier in the day, the embassy said that 15 survivors of the tragic boat accident have been discharged from hospital after receiving medical treatment and are returning to India.

0: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे कलाकार प्रेम सिंह पूर्ति और साथियों की आवाज में हो लोकगीत। और अब मुझे यानी प्रवीण को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: झारखंड के लोकगीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। ओमान देशस्य तटे वाणिज्यिक नौकायानस्य GFS गैलेक्सी इत्यस्य उपरि आक्रमणस्य भारतं निन्दाम् अकरोत्। दश भारतीयाः रक्षिताः, एकश्च लुप्तोऽस्ति इति सूच्यते। भारतदेशः अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौकायानस्योपरि निरन्तर आक्रमणानां विषये चिन्तां प्राकटयत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इण्डोनेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड देशानां परिभ्रमणकाले अनेकाः सन्धीः समाप्य नवदेहलीं प्रत्यागतवान्। गृहमन्त्री अमितशाहः अहमदाबादनगरे अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च अकरोत्। कर्मचारी भविष्यनिधि संघटनम् स्वायत्त भविष्यनिधि न्यासं संचाल्यमानानां प्रतिष्ठानेभ्यः तेषां स्थितिं नियमितं कर्तुं षण्मासस्य एम्नेस्टीति योजना प्रवर्तयति। विम्बल्डन् क्रीडायां यानिस् सिनर् इत्येषः अद्य सायंकाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव इत्यनेन सह पुरुष एकल उपाधिं प्राप्तुं संघर्षं करिष्यति। अपि च फीफा विश्व चषक क्रीडायां इंग्लैंड देशः अर्जेंटीना देशस्य उपांत्य चक्रं प्रविशतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य पूर्वं ओमान देशस्य तटे GFS गैलेक्सी इति वाणिज्य नौकायां कृताक्रमणस्य भारतं निन्दाम् अकरोत्। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये सूचितं यत् नौकायां

0: सौकर्याणि च मिलित्वा प्रायः चत्वारिंशदधिकैकशतम् ईरानी सैन्यस्थलानि लक्ष्यीकृतानि। ईरानदेशः बहरीन, कुवैत, कतार, संयुक्त अरब अमीरात देशान् लक्ष्यीकृत्य क्षिपणि ड्रोन आक्रमणैः प्रत्युत्तरं प्रदत्तवान्। कतरदेशः कुवैत देशश्च आगच्छतां प्रक्षेपकान् अवरोधयितवन्तौ इति अवदताम्। कूटनीतिक्षेत्रे प्रसारमाध्यमेषु निवेशेषु च गल्फ राष्ट्रं प्रमुख वैश्विक पुरोधत्वेन परिवर्तयतः। कतरदेशस्य पूर्व प्रमुखः अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्येषः चतुस्सप्तति वयसि अम्रियत। शेख हमद इत्ययं कतरदेशे अष्टादश वर्षाणि यावत् शासनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः त्रयोदशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे क्षेत्रीय परम्परां समुल्लङ्घ्य स्वेच्छया स्वपुत्राय अधिकारान् समर्पितवान्। तस्य नेतृत्वे कतरदेशः वैश्विक ऊर्जा शक्ति केन्द्र रूपेण उद्भूतः। अल जजीरा वार्ता जालस्य आरम्भं कृतवान्, स्वस्य अन्ताराष्ट्रिय निवेशस्य विस्तारं कृतवान्। द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे फीफा विश्वचषक क्रीडायाः सफलतया आतिथ्यञ्च अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना तस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी एकः दूरदर्शी नेता आसीत्, यः कतरदेशं विकासस्य समृद्धेः च महत्तरस्तरं नीतवान् इति श्रीमोदी सामाजिक प्रसारमाध्यमे उक्तवान्। कर्मचारी भविष्यनिधि संघटनं स्वायत्त भविष्यनिधि न्यासं संचाल्यमानानां प्रतिष्ठानेभ्यः तेषां स्थितिं नियमितं कर्तुं षण्मासस्य एम्नेस्टीति योजना प्रवर्तयति। केन्द्रीयमन्त्रिणा शिवराजसिंहचौहानेन उक्तं यत् पर्यावरणस्य रक्षणाय, सुस्थिरस्य भविष्यस्य सुनिश्चिततायै च वृक्षाणां रोपणम् अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। नवदिल्ल्यां वृक्षमित्रकार्यक्रमं तथा पर्यावरणसंरक्षणसंकल्पकार्यक्रमं सम्बोधयता श्रीचौहानेन उक्तं यत् अद्य सम्पूर्णे विश्वे ऋतुदशापरिवर्तनस्य, भूमण्डलीय वार्मिंग इत्यस्य च विषये चिन्ता वर्तते। विम्बल्डन टेनिस क्रीडायां विश्वस्य शीर्षक्रीडकः यानिस सिनर इत्येषः भारतीय समयानुसारं सायं सार्धाष्टवादने पुरुष एकलेत्यस्य अन्तिमायां स्पर्धायां जर्मनीदेशस्य एलेक्जेंडर जेवरेव इत्यमुं सम्मुखीकरिष्यति। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय पंक्तौ अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन इत्येतानि च राष्ट्राणि सम्प्राप्तानि।
1: संस्कृत में समाचार का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं विराम और सुनते हैं ये संदेश।
2: चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
6: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: विराम के बाद हम हाजिर हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। जी हां श्रोता मित्रों, प्रधानमंत्री कुसुम योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को सौर ऊर्जा से जोड़ना। इसके तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाने या बंजर जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कुल लागत का 60% से 90% तक की भारी सब्सिडी दी जाती है। किसानों की बंजर या कृषि योग्य भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, इससे उत्पन्न बिजली को बेचकर आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड सोलर पंप लगाना, पहले से चल रहे कृषि पंपों का सौरीकरण करना, ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से चलाया जाता है और अतिरिक्त बिजली ग्रिड की बिक्री कर तगड़ी कमाई की जा सकती है। श्रोता मित्रों, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कुल लागत पर 60% तक की सब्सिडी सीधे किसानों को देते हैं। इसके अलावा बैंक से लगभग 30% तक का लोन आसानी से मिल जाता है, यानी हमारे किसान भाई बहन अपने तरफ से केवल 10% राशि का ही योगदान करते हैं। किसान भाई बहनों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन हमेशा राज्य सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से किया जाता है। सर्वप्रथम आप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित राज्य के लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें। आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो को आपको उपलब्ध कराने होंगे, तब जाकर आप अन्य लाभुकों की तरह आवेदन कर पाएंगे। यह योजना खेती में डीजल के उपयोग को कम करके कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद करती है। सौर ऊर्जा से दिन के समय सिंचाई करना आसान हो जाता है और अपनी खाली जमीन से अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं आप। पर एक बात का ध्यान आप सभी अवश्य रखेंगे, फर्जी वेबसाइटों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस योजना के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट किसानों से ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क और पंप की कीमत जमा करने का झांसा देंगे, जिससे आपको बचने की जरूरत है।

श्रोता मित्रों, बात अगर हम ड्रिप सिंचाई विधि की करें तो ड्रिप सिंचाई विधि को ही टपक सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। यह पानी की बचत करने वाली एक उन्नत तकनीक है। इसमें पानी और खाद प्लास्टिक पाइप के छोटे छेदों से सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद कर गिराए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के मुख्य भाग की बात में अगर पंप की बात करें तो यह पानी को खींचने के लिए उपलब्ध है। फिल्टर कचरे या रेत को साफ करता है ताकि पाइप के छेद बंद ना हो। मुख्य और उप पाइप के माध्यम से खेत तक पानी ले जाने का कार्य आसानी से किया जाता है। लेटरल पौधों की कतारों में बिछाई गई पतली पाइपें होती है। ड्रिपर का उपयोग पौधों के पास पानी टपकाने वाले नोजल के रूप में होता है। ग्रामीण भाई बहनों, अगर हम ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लाभ के संबंध में बात करें तो यह पारंपरिक बाढ़ सिंचाई की तुलना में 40% से 60% तक पानी बचाता है। उर्वरक पानी में घोलकर सीधे जड़ों तक पहुंचाए जाते हैं, जिसे फर्टिगेशन कहते हैं। इससे खाद की बर्बादी नहीं होती है, केवल जड़ के पास की मिट्टी गीली होती है, जिससे खाली जगह पर घास फूस नहीं उगते। इतना ही नहीं, पौधों को सही समय पर सही मात्रा में नमी मिलती है, जिससे फसल अच्छी होती है। ग्रामीण भाई बहनों, जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, ठीक वैसे ही ड्रिप सिस्टम काम करता है। इसमें पानी सीधे पौधों के मुंह में जाता है। नलियां जमीन पर बिछी होती है। मोटर चालू होने पर पाइप में थोड़ा दबाव बनता है। इस दबाव से ड्रिपर प्रति घंटे लगभग 2 लीटर पानी बाहर निकालते हैं। इनलाइन सिस्टम में नली के अंदर ही छेद बने होते हैं, या आसपास उगाई जाने वाली सब्जियों के लिए अच्छी है। वहीं ऑनलाइन सिस्टम की बात करें तो इसमें नली के ऊपर अलग से ड्रिपर लगाए जाते हैं, या दूर लगाए जाने वाले फलों के पेड़ों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा।

बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित भेंटवार्ता का प्रथम प्रसारण सुनते हैं। जी हाँ, विषय है बरसात के मौसम में सांपों से रहे सुरक्षित। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं श्री मिथिलेश श्रीवास्तव। तो चलिए सुनते हैं।

0: हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम ढेर सारी जानकारियों को साझा करने वाले। मिथिलेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मिथिलेश जी, सर्वप्रथम बताएं कि बारिश के मौसम में कीड़े मकौड़ों का खतरा क्यों बढ़ जाता है, खासकर कीड़े मकौड़ों की बात करें या फिर सांपों की बात करें, तो बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जो कि सारे कीड़े मकौड़े जो हैं वो बाहर आ जाते हैं?
1: बारिश का मौसम में जो सांप कोई चूहा के बिल में छुपता है तो पानी भर जाने के बावजूद वो बाहर निकल जाता है, अपना भोजन के लिए बाहर बिल से निकलते हैं, बिल से पानी पूरा भर जाने के बावजूद और ज्यादा वो बरसात में सांप दिखते हैं।
0: अच्छा, मतलब पानी का भराव जो हो जाता है गड्ढों में, खासकर सांपों के बिलों में, तो फिर वो बाहर आ जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: अच्छा मिथिलेश जी, एक बात बताइए कि जैसे हमारे ग्रामीण भाई बहन खेतों में काम करते हैं और उस दौरान जो सांप का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि आपने बताया कि पानी में सांप बाहर आ जाते हैं, तो ऐसे में जो हमारे ग्रामीण भाई बहन या फिर शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो शहरी क्षेत्र में भी लोग जो हैं बारिश के मौसम में सुनने को आता है यहाँ सांप निकल गया, वहाँ सांप निकल गया, तो वैसी परिस्थिति में हम किस प्रकार ध्यान रखेंगे?
1: देखिए, बरसात के मौसम में सांप ज़्यादातर निकलते हैं। किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आप में जा रहे हैं, चाहे कहीं रात को बाथरूम जा रहे हैं, तो एक टॉर्च और डंडा हाथ में जरूर लेके जाएं
0: जी,
1: ताकि बरसात के सीजन में सांप ज्यादातर निकलते हैं अपने भोजन के तलाश में
0: जी।
1: और इसी बीच में किसी का पैर सांप के ऊपर लग जाता है तो सांप तुरंत काट देता है, और बहुत ग्रामीण लोग को अंधविश्वास के चक्कर में, झाड़फूंक के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उसमें उस इंसान का जान चल जाता है।
0: झाड़फूंक की आप बात कही आपने, अगर मान लीजिए कि सांप अगर किसी व्यक्ति को काट देता है, तो वैसी परिस्थिति में अंधविश्वास की जो आपने बात की है, वो किस प्रकार से अंधविश्वास के चक्कर में चले जाते?
1: बहुत से लोग पुराने जमाने के क्या करते थे कि जब कोई धामिन सांप, ढोंड सांप काटता था तो उसमें जहर होता नहीं था, तो अगल बगल कोई ओझा बाबा के पास तुरंत जाते थे तो झाड़फूंक से वो बच जाते थे इंसान।
0: अच्छा।
1: अभी के डेट में जो जहरीले सांप काटेंगे वही ओझा के पास जाइएगा तो ओझा बोलेगा बहुत लेट में पहुंचे हैं हम, हमारे पास हम कोशिश करते हैं, लेकिन उस इंसान व्यक्ति का जान नहीं बचता है।
0: इसीलिए
1: हमारा कहना है कि सांप जब भी किसी को काटे तो ओझा गुने के चक्कर में ना पड़े, सीधा नजदीकी हॉस्पिटल जाए और जिस इंसान को सांप काटा उसे ना सोने दे, ना उसे ज्यादा देर खड़ा होने दे, और ना दूध पानी कुछ नहीं देना है, और उसको जो अंदर में डर है सांप के जहर से कम, और इंसान सांप के डर से हार्ट अटैक ज्यादा करते हैं।
0: अच्छा,
1: तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सांप जब भी काटे तो तुरंत उस मरीज को हॉस्पिटल लेके जाएं।
0: अच्छा, पहले लोग देखते थे या करते थे कि जैसे सांप काटा है तो फिर वो जिस जगह पे काटा गया है उसके ऊपर नीचे कसकर वो बांध देते हैं ताकि जहर जो है वो पूरे शरीर में ना फैले, ऐसा क्या है?
1: देखिए, जिस जगह सांप काटा है उस बगल में कोई रस्सी से बांधता है तो कोई ब्लेड चाकू से चीरा लगाता है, ये एकदम गलत चीज है
0: जी।
1: कभी भी पैर में जैसे सांप काटा तो जो हम लोग का घुटना बैंड होता है उस जगह एक स्टिक रखिए 1.5 फीट का।
0: अच्छा।
1: या क्रैक बैंडेड लीजिए या कोई सूती कपड़ा, ना ही ज्यादा कस के बांधना ना ज्यादा ढीला, मीडियम में बांध के पूरा थाई मतलब जांघ तक, नीचे से लेके जांघ तक बांध के पैर को स्ट्रेट रखना है ताकि जो ब्लड का सर्कुलर है वो अप डाउन होके बॉडी के ऊपर नहीं जाएगा।
0: अच्छा।
1: उसमें इंसान को 3 से 4 घंटा हॉस्पिटल जाने का समय मिल जाएगा।
0: अच्छा अच्छा मिथिलेश जी, एक बात बताइए आप हमें कि जैसे आपने कहा कि रात के वक्त हमारे ग्रामीण भाई बहन अगर खेत खलियान में जाते हैं तो टॉर्च और लाठी लेकर जाएंगे, अच्छा पैरों के सुरक्षा के लिए भी उन्हें कुछ जूता या फिर कुछ ऐसा पहनने की जरूरत है जिससे पैर पूरा ढका हो?
1: जी जरूर, एक गम बूट आता है उससे भी किसान सब पहन के अपना खेती भी कर सकते हैं ताकि उससे इंसान को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगा। अभी बरसात के सीजन में घर में ना ज्यादा कहीं कचरा रखिए, और जूता हेलमेट कुछ भी सामान फालतू है उसको साफ सुथरा रखें, और हेलमेट जूता को एकदम चेक करके पहने।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बरसात का सीजन में सांप अपना पानी से बचने के लिए कहीं छुपने का स्थान खोजता है।
0: बिल्कुल।
1: तो कहीं जूता में घुस जाता है तो कोई हेलमेट में घुस जाता है तो कभी कोई कूलर टीवी फ्रिज में भी घुस जाता है।
0: और जाने अनजाने में जब हम हेलमेट पहनते हैं या फिर जूता पहनते हैं तो हम सांपों की चपेट में आ जाते हैं।
1: जी जरूर।
0: अच्छा एक बात बताइए कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपने बताया कि गम बूट वो पहनकर हमारे ग्रामीण भाई बहन खेतों पर काम करेंगे, रात के वक्त अगर निकलते हैं तो टॉर्च और लाठी लेकर निकले, और अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्र की ही बात करें, मिथिलेश जी एक बात बताइए कि सांप हमारे घर में ना घुसे, इर्द गिर्द ना रहे, चाहे वो हम अपने घर की बात कर रहे हैं या फिर खेत खलियान की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या कुछ विशेष

0: छिड़काव करना चाहिए, जिसकी वजह से, जिसके गंध से सांप जो है वो हमारे इर्द गिर्द नहीं आएंगे।
1: जी, जैसे देखिए वन जीव हुआ, कुछ जानवर जंगली जानवर हुए, प्लस सांप बिच्छू हुआ। अभी जंगल इन लोगों का घर है। अब जंगल काटा जा रहा है, जंगल में आग लगाया जा रहा है, तो ये सब जीव जंतु टाउन में आ जा रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: और
0: शहर की तरफ।
1: जी शहर की तरफ आ जा रहे हैं। और जो सांप है वो घर में इसलिए ज़्यादा प्रवेश करता है, एक तो बरसात का पानी से बचने के लिए, दूसरा अपना भोजन के तलाश में, चूहा के तलाश में वो घर के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। और कुछ जहाँ कचड़ा उचड़ा रहता है, कुछ गंदगी बहुत लोग घर के चारों कोना में रख देते हैं, तो उस जगह उसको छुपने का स्थान मिलता है। सांप घर में प्रवेश ना करे, ना आए, उसके लिए हम एक उपाय बता रहे हैं। अभी तो मार्केट में मिट्टी तेल बहुत कम मिल रहा है,
0: जी
1: कुछ कुछ जगह में मिलता है। आप सब 1 लीटर मिट्टी तेल ले लीजिए और 1 लीटर ब्लैक फिनाइल जो क्रॉस वाला आता है, उसमें 6 से 7 लीटर पानी, ये तीनों को घोल बना के मिक्स करके एक डब्बा या गैलन में रख दीजिए। अब ये आपका कुल मिला के हो जा रहा 8-9 लीटर।
0: बिल्कुल
1: अब ये हो जा रहा आपका 10 से 15 दिन में 1 लीटर उसी डब्बा से निकालिए, घर में पोछा जो लगता है इसी पानी से लगाइए, और घर के चारों तरफ इस पानी से छिड़काव करने से कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू घर में प्रवेश नहीं करेगा।
0: बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है मिथिलेश जी, कि लोग जो हैं वो सांपों को मार देते हैं।
1: देखिए सांप हमारा पर्यावरण मित्र है, जैसे हम सबको पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, उसी तरह सांपों से भी हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है।
0: अच्छा।
1: लेकिन बहुत से लोग सांप को मार देते हैं, आज ये सांप विलुप्त हो जाएगा, कल को मनुष्य को बहुत हानि पहुंचेगा।
0: अच्छा
1: इसीलिए हम सब सब प्रेम मित्र हुए, चाहे फॉरेस्ट की तरफ से भी आप लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि सांप दिखे तो मारे नहीं, निजी कोई फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल करे, नहीं तो सांप रक्षक टीम को कांटेक्ट करके तुरंत उसे सुरक्षित रेस्क्यू करा के फॉरेस्ट में रिलीज करवाएं।
0: अच्छा मिथिलेश जी, जैसे अगर मान लीजिए आसपास ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें, कहीं सांप निकला है तो वो आपको किस नंबर पर सूचना देंगे या फिर आपसे संपर्क करेंगे?
1: देखिए हमारा नाम हुआ मिथिलेश श्रीवास्तव और छोटू स्नेक बॉय, 9006138085 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एक और नंबर दे रहा हूँ, 9304525147 ये हमारा 2400 घंटा मोबाइल ऑन रहता है।
0: यानी आपको रात बिरात हो या फिर दोपहर हो या फिर सुबह हो, अगर ऐसी परिस्थिति हो तो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं और आप फिर सांपों को सुरक्षित पकड़कर उन्हें जंगल पर छोड़ देंगे।
1: जी, हम और हमारा सर्वरक्षक टीम आज से 16-17 वर्षों से एक काम, हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के दूसरे का जान बचा रहे हैं और सांपों का भी जान बचा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है मिथिलेश जी, और सच में आप लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि जहां आप लोगों की रक्षा कर रहे हैं वहां आप सांपों की भी रक्षा कर रहे हैं और सुरक्षित उन्हें पकड़कर जंगल में छोड़ते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि इस दौरान लोग चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, सांप काट लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इतना बड़ा कार्य आप कर रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी काबिले तारीफ है। हम मिथिलेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोता मित्रों को चलते चलते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
1: हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सांप कभी दिखे तो मारे नहीं, और तुरंत सर्वरक्षक टीम को कांटेक्ट करें या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉल करें, ताकि सांप को भी बचाएं और सांप से इंसानों को भी बचाएं।
0: बिल्कुल श्रोता मित्रों, आपने जाना कि किस तरह से सांप से अपने आप को सुरक्षित रखना है और सांपों को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि वो वन्य प्राणी, वन्य जीव हैं जिनकी ज़रूरत है हमें। ऐसे में हमें एक दूसरे की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे ग्रामीण श्रोता मित्रों के साथ साझा की है मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चलिए, सबको हमारा तरफ से नमस्कार।
2: श्रोता मित्रों, बाह्य ध्वनि अंकन पर आधारित भेंटवार्ता का प्रथम प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। विषय था बरसात के मौसम में सांपों से रहे सुरक्षित। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे श्री मिथिलेश श्रीवास्तव।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे।
7: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता

0: होता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन।
2: श्रोता मित्रों, और रुक करते हैं चर्चा की ओर। जी हाँ, बारिश के दिनों में कृषि यंत्रों व साधनों के रखरखाव पर। जी हाँ, खेती किसानी के साथ साथ हमें हर बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है। खासकर बारिश के समय अगर हम इन दिनों कृषि यंत्रों व साधनों का सही से रखरखाव नहीं करेंगे तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। बारिश के दिनों में कृषि यंत्रों को जंग और नमी से बचाना बेहद जरूरी है। उन्हें पक्की छत वाले शेड में रखें, छत नहीं तो मोटी त्रिपाल से कसकर ढक दें। लोहे के पुर्जे पर मोबिल या ग्रीस लगाएं, साथ ही बैटरी को निकालकर सूखे स्थान पर रख दें। यंत्रों के हर हिस्से, खासकर जो हिस्से आपको लगे कि उसमें जंग लग सकता है, सूखी मिट्टी और फसल के अवशेष को पहले उस स्थान से साफ कर निकाल दें। मशीन को पानी और साबुन से धोने के बाद धूप में अच्छी तरह सुखा दें, क्योंकि नमी के कारण जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। लोहे वाले खुले हिस्से जैसे हल के फलक या कल्टीवेटर के खुरपे पर जला हुआ इंजन ऑयल या ग्रीस की परत अवश्य लगाएं। यंत्रों पर जंग लगी है तो रगड़कर नया पेंट कर दें। श्रोता मित्रों, इंजन और ईंधन की सुरक्षा की बात करें तो टैंक को पूरा भर दें या खाली कर दें, क्योंकि खाली टैंक में नमी जम सकती है। ट्रैक्टर की बैटरी अवश्य निकाल दें। इसे निकालने के बाद लकड़ी या प्लास्टिक के बोर्ड पर यानी सूखी जगह पर रख दें। साथ ही खुले बिजली के तारों को वाटरप्रूफ टेप से ढकें। बात अगर हम भंडारण की करें तो यंत्रों को त्रिपाल से ऐसे ढके कि हवा अंदर जाती रहे और जमीन का पानी यंत्रों तक ना पहुंचे। इस बात का ध्यान अवश्य रखें, यंत्रों को सीधे जमीन पर ना रखें, उन्हें लकड़ी या ईंटों के सहारे थोड़ा ऊपर रखें। इस तरह श्रोता मित्रों, बारिश के दिनों में कृषि यंत्रों व साधनों का रखरखाव हम सावधानी पूर्वक कर सकते हैं।

श्रोता मित्रों, एक नज़र डालते हैं मौसम संबंधी सूचना और सुझाव पर। जी हाँ, जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और इसके आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह और दोपहर के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश, आंधी या बिजली कड़कने की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती है जिनकी गति 38 से 44 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। सप्ताह के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 21 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। श्रोता मित्रों, अगर हम बात 13 जुलाई दिन सोमवार की करें तो वर्षा 11.0 मिलीमीटर होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 85% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 59% होने की संभावना है। हवा की दिशा होगी पश्चिमोत्तर से पूरब की ओर तथा रफ्तार रहेगी 11.3 किलोमीटर प्रति घंटे। खरीफ की सभी फसलों में आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करके खरपतवारों का नियंत्रण अवश्य करें। इससे खरपतवारों द्वारा फसलों को कम हानि होती है तथा जल की बचत होती है और जड़ों का विकास अच्छा होता है। धान की नर्सरी यदि 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा नील हरित शैवाल 1 पैकेट प्रति एकड़ का प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहाँ पानी खड़ा रहता हो, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो इसमें लौह तत्व की कमी हो सकती है। पौधों की ऊपरी पत्तियां यदि पीली और नीचे की हरी हो तो यह लौह तत्व की कमी को दर्शाता है। इसके लिए 0.5% फेरस सल्फेट के साथ 0.25% चूने के घोल का छिड़काव अवश्य करें। इस मौसम में किसान भाई बहनों, मक्का फसल की बुआई करें। संकर किस्मों की अगर हम बात करें तो AH 421, AH 58 और उन्नत किस्मों की बात करें तो पूसा कंपोजिट 3, पूसा कंपोजिट 4। आपको याद रखना होगा कि बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही आप खरीदें। बीज की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। यह समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है। अतः किसान भाई बहनों, पूसा चरी 9, पूसा चरी 6 या संकर किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें तथा लोबिया की बुआई का भी यह उपयुक्त समय है। यह समय मिर्च, बैंगन व

गोभी की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान भाई बहनों, पौधशाला में कीट अवरोधी नाइलोन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। बीजों को कैप्टन के उपचार के बाद पौधशाला में बुआई करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसल की बुआई करें। लौकी की उन्नत किस्मों में अगर हम बात करें तो पूसा नवीन, पूसा समृद्धि, करेला की पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी, सीताफल की पूसा विश्वास, पूसा विकास, तुरई की पूसा चिकनी धारीदार, साथ ही पूसा नजदार तथा खीरा की पूसा उदय, पूसा बरखा आदि किस्मों की बुआई आप कर सकते हैं। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। इसके उपरांत इमिडाक्लोप्रीड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। श्रोता मित्रों, फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों में गोबर की खाद मिलाकर 5.0 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढों में डालकर गड्ढों को पानी से भर दें ताकि दीमक तथा सफेद लट से बचाव हो सके। श्रोता मित्रों, इस मौसम संबंधी सूचना और सुझाव के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक ले दीजिए अनुमति प्रवीण को जोहार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हुआ चाहते हैं। अगली प्रस्तुति होगी आकाशवाणी के रांची केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे ठीक शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर केंद्र सरकार का जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोषण माह और पोषण पखवाड़े के जरिए जागरूकता बढ़ाने पर दिया बल। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा, गांव और पंचायतों को मजबूत करना राज्य सरकार का है लक्ष्य। अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जारी है कोशिश। प्रदेश भाजपा ने राज्य में चल रहे कौशल विकास मिशन में अनियमितता का लगाया आरोप। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भुगतान का दावा, न्यायिक जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का बयान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता, विपक्ष पर किया पलटवार। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए शुरू की 6 महीने की माफी योजना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि देश के 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से करीब 9 करोड़ लाभार्थियों तक पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के जरिए श्री अन्न और स्थानीय खान पान को बढ़ावा देकर महिलाओं और बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2: महिला बाल विकास विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। 14 लाख केंद्रों में लगभग 9 करोड़ के आसपास हमारे लाभार्थी हैं, जो 3 से 6 साल के हमारे बच्चे हैं। बच्चे को जब वो आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं तो उनको पोषण के साथ साथ उनको स्कूल के लिए रेडी करना, ये मुख्य लक्ष्य है।
1: ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि विकास का उद्देश्य केवल शहरों का विस्तार नहीं बल्कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक अवसर, सुविधा और सम्मान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार हर गांव और पंचायत को सशक्त बनाकर समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पर मंत्री ने एक पोस्ट के जरिए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण समान रूप तक पहुंचाना है। राम मंदिर निर्माण

0: समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दावा किया है कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालु मंदिर की व्यवस्थाओं और पूजा पद्धति से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि संभावित सीईओ की भूमिका और अधिकार तय करना ट्रस्ट का विषय है। वहीं कथित चढ़ावा गबन के आरोपों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रांची के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय ने ट्रस्ट की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।
1: ये एक बड़ा सवाल है कि जो आस्था के तौर पे मंदिरों में दान देते हैं ब्लाइंड तौर पे बिना बताए हुए डाल है, उन सारे चीजों का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तिरुपति इतना बड़ा मंदिर है, कभी आज तक ये बात नहीं आया हुआ।
0: प्रदेश भाजपा ने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी पर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को सूची से हटाकर करोड़ों रुपए के भुगतान का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने दस्तावेजों के आधार पर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। श्री शाह आज रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
2: झारखंड में स्किल डेवलपमेंट के विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को 55 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है, और अगस्त यानी कि अगले महीने से इनको और पेमेंट देने की तैयारी है। इसमें क्या रूपरेखा, कैसे ये पूरा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, मैं एक एक करके आपके सामने इसका विवरण रखता जाऊंगा।
0: झारखंड में स्वर्ण व्यवसायियों के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्री मरांडी ने गोड्डा और गुमला जिले में हाल की लूट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार पर सुरक्षा देने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की मांग भी की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया कि वे प्रतिदिन लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का प्रयास करते रहें और जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि राज्य सरकार के कार्यों के प्रति जनता का भरोसा दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर दिया गया है। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है। एक रिपोर्ट।
3: ईपीएफओ की एमनेस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रशासनिक भवन परिसर में हरित वेदिका के तहत पौधारोपण के साथ हुआ। कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों ने पौधारोपण किया। पाकुड़ जिले

0: में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों पर डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए। कैंपों में गणना प्रपत्र को वितरण, संग्रह और ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल सहित अन्य अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। खूंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एक हार्डकोर उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। रांची में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय थ्रोबॉल खिलाड़ियों ने शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना दिया। खिलाड़ियों ने राज्य में समानांतर संगठन बनाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे चयन प्रक्रिया, मान्यता और खिलाड़ियों के भविष्य पर असर पड़ेगा। थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष वेदांत कौस्तभ ने कहा कि खिलाड़ियों को विवाद नहीं बल्कि बेहतर प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और रोजगार के अवसर चाहिए।
1: जब से थ्रोबॉल झारखंड में आया है तब से लगातार यहाँ के खेल को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है। इसी बीच कई एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, सेकंड साउथ एशियन चैंपियनशिप का भी आयोजन हुआ। कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लिए और भारत के लिए एक बहुत गर्व का विषय। कुछ दिन पहले एक नए संघ का घोषणा किया गया है, अनुचित है यहाँ के खेल के लिए। तो हमें लगता है कि खेल को और इस खिलाड़ियों को बांटने का एक प्रयास है।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में आज जापान कराटे एसोसिएशन झारखंड की ओर से कराटे प्रशिक्षण शिविर सह ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन किया गया। शिविर में चाईबासा सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लगभग 150 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा परीक्षा में हिस्सा लिया। इस मौके पर JKA इंडिया के तकनीकी निदेशक सिहान आनंद रत्ना ने खिलाड़ियों को कराटे की उन्नत तकनीकों और आत्मरक्षा के प्रभावी तरीकों की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर केंद्र सरकार का जोर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोषण माह और पोषण पखवाड़े के जरिए जागरूकता बढ़ाने पर दिया बल। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा, गांव और पंचायतों को मजबूत करना राज्य सरकार का है लक्ष्य, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की जारी है कोशिश। प्रदेश भाजपा ने राज्य में चल रहे कौशल विकास मिशन में अनियमितता का लगाया आरोप। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भुगतान का दावा, न्यायिक जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी का बयान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता, विपक्ष पर किया पलटवार। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए शुरू की 6 महीने की माफी योजना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव,
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता।
1: झारखंड राज्य में एसआईआर 2026 कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही गढ़वा जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम को पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय पूरी तरह से गंभीर है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्र ने एक प्रेस वार्ता कर इसकी विस्तृत जानकारी दी।
2: एसआईआर विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया, जो बीएलओ घर घर जाके गणना का काम शुरू करेंगे। इसमें बीएलए

0: राजनीतिक दलों के लोग हैं उनसे सहयोग मांगा गया है और हर स्तर पे उनको भी निर्देशित किया गया है कि अभियलों को सपोर्ट करें ताकि कोई भी मतदाता जो योग्य है मतदाता सूची में एनरोलमेंट से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता जो इस पात्र मतदाता सूची में रहने के लिए पात्रता नहीं रखता है वो इसमें किसी भी कीमत पे जुड़े नहीं। और बीएलए 2 का भी दायित्व तो है कि अपने वोटर्स को समझाएं कि यथासंभव मदद करें और जल्दी से फॉर्म भर के उनको दिलवाएं।
1: केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित हो रही उत्तर कोयल जलाशय परियोजना में विस्थापित होने वाले आदिवासी परिवारों के विरोध के कारण इस महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है। विशेषकर डूब क्षेत्र में आने वाले शहीद नीलांबर पीताम्बर के गांव चेमो सनिया के विस्थापित होने वाले आदिवासी परिवारों ने मंडल डैम के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंडल डैम का विरोध कर रहे आदिवासियों का नेतृत्व कर रहे भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा,
2: देश की स्वतंत्रता संग्राम में नीलांबर पीताम्बर का हमारा योगदान है, बिरसा मुंडा हमारा योगदान है, सिद्धू कानू का है। तो अब आप जो है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का वायलेशन करके आप जमीन को जो है कब्जा करना चाहते हैं उसकी इतिहास पीठभूमि समाप्त हो जाएगा, इसलिए इनकी मांग को समर्थन करने के लिए आए हैं। वो कहना चाहते हैं यहाँ की हेमंत सरकार तानाशाही काम कर रही है, रिप्स 2 में भी जबरन काम करने का काम कर रही है और यहाँ पर कुटकू जलाशय लाकर के आदिवासी को विस्थापित किया जा रहा है। तो कहने का मतलब हमारे इतिहास पीठभूमि जाएगा तो हम आदिवासी कहाँ रहे। इसे मांग करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत जैसा काम काम।
1: जिला मुख्यालय गढ़वा में पिछले दिन मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में महिला पुरुषों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस अवसर पर रक्तदान करने वाली नेहा कुमारी नामक महिला ने एक अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
3: खुशी हो रही है, पिछला बार मेरा ब्लड दान हुआ है और बहुत गर्व की बात है कि एक महिला होकर मैं ब्लड दान की हूँ। और हम सभी महिला से बोलती हूँ कि आप लोग भी बहुत गर्व के साथ रक्तदान करें क्योंकि गरीब को बहुत मतलब सहयोग होता है और सभी महिला को बोलेंगे कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले क्योंकि हम लोग के महिला को मतलब कमजोर समझा जाता है लेकिन हम लोग किसी से कमजोर नहीं है।
1: जिले में काफी प्रतीक्षा के बाद जुलाई महीने में मानसून ने दस्तक देकर खेती से निराश हो रहे किसानों में नई उम्मीद जगा दी है। जिले में 5 जुलाई के बाद से रह कर लगातार बारिश हो रही है। बारिश होते ही जिले में चारों ओर भदई फसल और धान के बिचड़े की बुआई शुरू हो चुकी है। मानसून के आगमन के साथ ही किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
4: अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

आकाशवाणी रांची से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले में आजकल। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:16 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।

0: बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:45 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण।
1: कार्यक्रम हमारा पर्यावरण के सभी श्रोता दोस्तों को संतोषी का नमस्कार।

स्वागत है आप सभी श्रोता दोस्तों का। दोस्तों, पर्यावरण के बिना हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें इस बारे में सोचने और समझने का मौका देता है। लेकिन पर्यावरण के बारे में एक दिन ही नहीं बल्कि रोज सोचे जाने की जरूरत है, क्योंकि हालात बेहद खराब हैं। देश में किसान ही है जो असामान्य बारिश से लेकर सूखे तक मौसम के तमाम उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा पीड़ित है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब बाढ़ के समय सूखा और सूखे में बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। ये निराशाओं का दौर है। अब वक्त आ गया है कि हम इसे मान्यता दें ताकि तेजी से बेहतर समाधान पेश किया जा सके। मौसम की सुर्खियां अक्सर खबरों में गुम हो जाती है। मौसम की खबरों से वंचित रहने के तीन कारण हैं। पहला ये कि बदलाव को अब तक मान्यता नहीं मिली है। दूसरा, हमारे पास उन आवाजों को सुनने का कोई माध्यम नहीं है जो विज्ञान द्वारा स्थापित नहीं है। इस वजह से परिवर्तन के सबसे बड़े पीड़ित किसानों की अनदेखी हो रही है। ये भी सच है कि जलवायु परिवर्तन जैसे शब्दों से वे अनजान हैं। साधारण शब्दों में कहें तो उनके लिए मौसम बदल रहा है और इनकी मार उन पर पड़ रही है। तीसरा है, मौसम की सुर्खियां अक्सर इसलिए भी सुनाई नहीं देती क्योंकि इसका शोर तभी मचता है जब मध्यम वर्ग और शहर इससे प्रभावित होते हैं। खबरों में आने के लिए कुछ गंभीर कदम उठाने जरूरी होते हैं। इस तरह के घटनाक्रम हमारी रोजमर्रा का हिस्सा है, लेकिन ये खबरें दूर दराज के क्षेत्रों और लोगों से जुड़ी होती है, इसलिए ये हमारी खबर नहीं बन

0: पाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों खराब मौसम की वजह से कई फसल तबाह हो जाते हैं। ये खराब मौसम, अत्यधिक बारिश, बहुत कम बारिश, बहुत ठंड, बहुत गर्मी, अचानक ओलावृष्टि के रूप में आता है और जानलेवा साबित होता है। इस तरह की घटनाएं अनियमित नहीं बल्कि अब ये नियमित हो चुकी हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमें इस बदलाव को मान्यता देने को मजबूर करते हैं। ये कहना गलत होगा कि शहरी भारत मौसम के बदलाव या प्रदूषण से बराबर प्रभावित नहीं है। इस मामले में ग्रामीण और शहरों में कोई भेद नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि आवास, जल, सीवेज, कचरा और प्रदूषण जैसे शहरी संकट ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कतें पैदा करेंगे। ऐसे में मौसम की मार से परेशान ग्रामीण रोजगार के लिए शहरों का रुख करेंगे। भारत की शहरी आबादी पिछले दशकों में बेतहाशा बढ़ी है। दोस्तों मौसम परिवर्तन के प्रभाव के लिए कहीं न कहीं हमारा प्रबंधन दोषपूर्ण है। हम बाढ़ प्रभावित जमीनों का निर्माण कर रहे हैं, अपने जल स्रोत नष्ट कर रहे हैं और जल मार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं। खराब मौसम के बीच इन हालातों ने हमारी मुश्किलें और बढ़ा दी है। समय के साथ जलवायु परिवर्तन में तेजी ही आएगी, मौसम और बारिश की अनिश्चितताएं और बढ़ेंगी, नतीजा बर्बादियों का दायरा भी बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन खास रूप से मानव जीवन को ही प्रभावित नहीं करते बल्कि वनस्पतियों और पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। चूंकि जलवायु के मामूली परिवर्तन भी इनके आवास और खाद्य उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा वन्य जीवों, पशुधन, फसलों, वनों और जलीय जीवों से संबंधित रोगों से भी है। फफूंदी रोग जैसे सोयाबीन रस्ट गर्मी और नमी के कारण अधिक तेजी से फैलेगा। मौसम के बदलते प्रतिमान कई देशों में पानी की उपलब्धता को खतरा पैदा कर रहे हैं, जहां भूजल का या तो अत्यधिक दोहन कर लिया गया है या जहां भूजल स्तर बढ़ाने के उपाय नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर ये मानना एकदम सही है कि विश्व में तेजी से बढ़ रहा तापमान रोग पैदा करने वाले जीवों और खाद्यान्न वनस्पति नाशियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। यदि वैश्विक जलवायु परिवर्तन में वृद्धि उपलब्ध खाद्यान्न को नष्ट करने में सहायक होती है तो मानव सभ्यता के लिए इसके परिणाम ज्यादा नकारात्मक होंगे। अभी भी बड़ी संख्या में लोग खाद्यान्न और पोषण के अभाव में जी रहे हैं और ये संख्या हर साल बढ़ रही है। यानी कि दोस्तों जरूरत है जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता की। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें से एक है पर्यावरण शिक्षा और शिक्षकों की इसमें भागीदारी। ये किस तरह संभव हो पाएगा इस पर विस्तार से जानकारी दे रही है नीलम सिन्हा।
1: पर्यावरण शिक्षा यह सिखाने के सुनियोजित प्रयास की ओर संकेत करती है कि किस प्रकार मनुष्य चिरस्थायी अस्तित्व के लिए स्वाभाविक वातावरण की क्रियाओं और विशेषता अपने व्यवहार और पारिस्थितिक तंत्र में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। पर्यावरण शिक्षा अधिगम की एक प्रक्रिया है जो पर्यावरण और इससे जुड़ी चुनौतियों के संबंध में लोगों की जानकारी और जागरूकता बढ़ाती है। पर्यावरण और पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पर्यावरण शिक्षा का केंद्र बिंदु है। पर्यावरण शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। इसका प्रयोग जनता और बच्चों को शिक्षित करने के समस्त प्रयासों के लिए किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के संबंध में चिंता की प्रवृत्ति और पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक है। वर्तमान कालखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं चिंताकारक विषय पर्यावरण है। पर्यावरण का संरक्षण एवं स्वस्थ विकास एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसका मूल कारण पर्यावरण के प्रति जागरूकता का घोर अभाव है। ऐसे में शिक्षक तथा बच्चे मिलकर समाज को इस दिशा में प्रेरित एवं उद्वेलित करने की पहल कर सकते हैं। वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। प्रकृति में इन सब की मात्रा और इनकी रचना कुछ इस प्रकार से है। आज के दौर में पर्यावरण संबंधित परेशानी एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है। हमें हमारे पर्यावरण को स्वस्थ और प्रदूषण से दूर रखने के लिए अपने स्वार्थ और गलतियों को सुधारना होगा। वायु और जल प्रदूषण विभिन्न बीमारियों और विकारों द्वारा हमारे स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। आजकल हम किसी भी चीज को सेहतमंद नहीं कह सकते, क्योंकि जो हम खाते हैं वो पहले से ही कृत्रिम उर्वरकों

के दुष्प्रभाव से प्रभावित हो चुका है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर दिया है। यही कारण है हम में से कोई भी स्वस्थ और खुश रहने के बावजूद कभी भी रोगग्रस्त हो सकता है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण और जीवित चीजों के बीच नियमित रूप से विभिन्न चक्र घटित होते रहते हैं। किसी भी कारण से ये चक्र बिगड़ जाते हैं तो प्रकृति का भी संतुलन बिगड़ जाता है, जो कि अंततः मानव जीवन को प्रभावित करता है। मनुष्य पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा बनाई गई सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में माना जाता है, इसलिए उनमें ब्रह्मांड के बारे में पता करने की उत्सुकता बहुत ज्यादा है, जो कि उन्हें तकनीकी उन्नति की दिशा में ले जाता है। शिक्षक को समाज का निर्माता एवं सूचना का वाहक कहा जाता है। शिक्षक का कार्य मात्र सूचनाएं देना नहीं बल्कि क्रियाओं को करके दिखाना है। कहा भी गया है, टीचर इज नॉट ओनली सोर्स बट ऑल्सो अ रिसोर्स। शिक्षक स्रोत ही नहीं साधन भी। वर्तमान में इस बात की महती आवश्यकता है कि शिक्षकों और छात्रों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रति समाज में चेतना उत्पन्न की जाए। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन में शिक्षक के उत्तरदायित्व रोल मॉडल पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि सर्वप्रथम शिक्षक को प्रत्येक क्षेत्र रोल मॉडल बनना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के प्रति शिक्षक को स्वयं ही जागरूक हो वृक्ष लगाना, साफ सफाई, नैतिक, चारित्रिक एवं सामाजिक गुणों को अपने जीवन में अंगीकृत करता हो। शिक्षक पर्यावरणीय तकनीकियों की जानकारी से छात्रों को अवगत कराएं तथा उनमें प्रारंभ से ही नैतिक गुणों एवं अच्छी आदतों का विकास करें। सांस्कृतिक एवं सामुदायिक क्रम। शिक्षक समाज को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम जैसे NCC, NSS, स्काउट गाइड्स एवं अन्य सभी छात्रों के सहयोग से विद्यालय के अंदर एवं बाहर नुक्कड़ नाटक, पर्यावरण गीत एवं विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की सहायता से जन आंदोलन ला सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषित स्थिति का छात्र प्राकृतिक वेशभूषा पहनकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं तथा छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा स्वयं समाज में वृक्षारोपण किया जा सकता है। जागरूकता रैली एवं बोलती दीवारें समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना फैलाने के लिए शहरों एवं विशेषकर गांवों की गलियों में जागरूकता रैली निकाल सकते हैं तथा दीवारों पर पर्यावरण से संबंधित स्लोगन, संरक्षण एवं प्रदूषण की स्थिति के वास्तविक चित्र स्वयं एवं छात्रों के लिख एवं बना सकते हैं। पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। अकादमिक कार्य एवं सृजनात्मकता। शिक्षक विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित लेख, वाद विवाद प्रतियोगिता, सेमिनार आदि आयोजित कर छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं। लैब एवं प्रकोष्ठ। विभिन्न विषयों की भांति विद्यालय स्तर पर भी पर्यावरण शिक्षा के लिए एक लैब तथा प्रकोष्ठ की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए संवेदना एवं जिज्ञासा उत्पन्न होगी। प्रोजेक्ट कार्य क्रियात्मक शोध। शिक्षक पर्यावरण शिक्षा से संबंधित छोटे छोटे प्रोजेक्ट कार्य तथा शीघ्र ही समाधित होने वाले समस्या हमारी समाधान भी हमारा के उद्देश्य पर आधारित क्रियात्मक शोध व्यक्तिगत या समूह दे सकते हैं तथा विद्यालय के अन्य सभी छात्रों का सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमें हमारे पास समूह रूपी ऐसा पौधा तैयार होगा जो भविष्य में पर्यावरण के प्रति सचेत एवं संवेदनशील होगी। वर्तमान में समय आ गया है कि आध्यात्मिक बुद्धि को बढ़ावा दिया जाए। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने अस्तित्व का ज्ञान, वह ज्ञान जो हमें यह बोध कराए कि हम कौन हैं, क्यों हैं और हमारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। अपने आप को जानकर ही हमारी स्वयं पर्यावरण एवं राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक आंदोलन से ही पर्यावरण संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि हमारे सभी धर्मों ने इसको प्राथमिकता दी है। छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए जोश, जज्बा और जुनून विकसित करने एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आध्यात्मिक मंडल, स्पिरिचुअल सर्किल का गठन किया जा सकता है। सिर्फ पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पूरे ब्रह्मांड में जीवन संभव, और पृथ्वी पर जीवन जारी रखने के लिए हमें हमारे पर्यावरण की मौलिकता को बनाए रखने की जरूरत है। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक अभियान है जो कई वर्षों से हर साल 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा और सफाई के लिए जनता में जागरूकता का प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। हम अपने पर्यावरण को बचाने के तरीके और सभी बुरी आदतें जो कि हमारे पर्यावरण को दिन ब दिन नुकसान पहुंचा रहा है के बारे में जानने के लिए हमें इस अभियान में निश्चित रूप से भाग लेना चाहिए।

0: व्यस्त भीड़ और उन्नत जीवन में हमें दैनिक आधार पर छोटी छोटी बुरी आदतों का ख्याल रखना चाहिए। यह सत्य है कि हर किसी के छोटे से छोटे प्रयास से हम हमारे बिगड़ते पर्यावरण की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम हमारे स्वार्थ के लिए और विनाशकारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हम हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए, लेकिन हमेशा यह सुनिश्चित रहे कि भविष्य में हमारे पर्यावरण को इससे कोई नुकसान न हो। हमें सुनिश्चित होना चाहिए कि नई तकनीक हमारे पारिस्थितिक संतुलन को कभी गड़बड़ न करे। विश्व में यदि सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक स्वयं तथा छात्रों के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रति समाज को जागरूक कर जन चेतना फैलाए तो भविष्य की महाविभीषिका से आने वाली पीढ़ियों की रक्षा की जा सकती है, क्योंकि शिक्षक का एकल प्रयास ही भविष्य का सामूहिक प्रयास होगा। मिट्टी, पत्थर, चट्टानों और जल से बनी अपनी इस धरती को हम यदि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये अनुभव करेंगे कि हमारी धरती एक सजीव तत्व है, जरूरत है तो इसे सहेज कर रखने की। स्वस्थ पर्यावरण प्रसन्न मन को आमंत्रण देता है और प्रसन्न मन कामयाबी की ओर रास्ता दिखाता है। पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब न घटने पाए, मिलकर हम सब कसम ये खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं।
1: पर्यावरण शिक्षा और शिक्षकों की भागीदारी, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीलम सिन्हा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा पर्यावरण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बज चुके हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
4: ज्ञान विज्ञान
5: इतिहास के पन्नों से,
4: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
3: मौसम का मिजाज,
4: अपने शहर की खबरें,
5: बातों मुलाकातों के साथ
3: सुरीला मनोरंजन
4: और भी बहुत कुछ।
3: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
0: फिल्म संगीत के तमाम श्रोताओं को रेडियो दोस्त विभाग का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

शंकर महादेवन की आवाज़ में तारे ज़मीन पर इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और इसकी धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने।

आशिकी फिल्म के इस गाने में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की मिली जुली आवाज़ों को। शब्द रचना थी समीर की और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

0: बाजीगर फिल्म के इस गाने में अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनु मलिक की आवाज़ों को। शब्द रचना देव कोहली की थी और संगीत निर्देशन अनु मलिक का।
1: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

क्योंकि इट्स फेट, इस फिल्म से लिए इस गाने में अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की मिली जुली आवाज़ों को। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत निर्देशन था हिमेश रेशमिया का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो से शान और साथियों की आवाजों में। इरशाद कामिल का लिखा गीत और संगीत हिमेश रेशम।

अमित कुमार, सोनू निगम, अलका याग्निक, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की मिली जुली आवाज़ों को आप सुन रहे थे फिल्म कभी खुशी कभी गम के इस गाने में। शब्द रचना समीर अंजान की थी और संगीत दिया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म खट्टा मीठा से।

0: अरिजीत सिंह और निहारा जोशी की आवाज़ में अभी आप ये गाना सुन रहे थे, गुलजार का लिखा गीत और शंकर एहसान लॉय का संगीत था। इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत की प्रस्तुति से मुझे यानी विभा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कार्यक्रम फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ोरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार

0: सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
4: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101

0: नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देश भर में लगभग 668

करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रोजलिंड मैथ्यू आकाशवाणी बेंगलोर, निहारा केनेटी आकाशवाणी हैदराबाद, हर्ष पांडे आकाशवाणी कोलकाता, गौरव सिंपी आकाशवाणी पुणे, हिमांशु आकाशवाणी कोटा, शौर्य चौधरी दिल्ली एंड वीरेंद्र सिंह आकाशवाणी जलंधर. द फीचर वॉज रिटन प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय नितेश अरोड़ा फॉर द सेंट्रल इंग्लिश फीचर यूनिट एंड केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी. Please stay tuned in for our next broadcast that follows shortly.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह.

0: का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मरडूर, अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार बाय द संगीत नाटक अकेडमी। कुमार मरडूर stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior gharanas, along with training under his father, Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur Atrauli and other gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, thumri, Hindi bhajans, Marathi Abhangs, Kannada Dasa Sahitya, Kannada Vachana Sahitya, and many other traditions. An A-grade artist of Akashwani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मरडूर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तिंताल एरी मालनिया, द्रुत तिंताल तराना।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री पंचाक्षरी हिरेमठ। श्री कुमार मरडूर विल बिगिन हिज वोकल रिसाइटल विद राग छायानट। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालिनिया, फॉलोड बाय तराना इन द्रुत तीन ताल।

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डोर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करत।
1: You just heard राग छायानट। श्री कुमार मल्डोर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करत।

0: सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Rag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम बैंड के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 11:10 हो चुके हैं। आज का ये प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। कल इसी फ्रीक्वेंसी पर हम प्रातः 5:55 पर पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।